0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
0: 88.4 FM.

जी साईं, असारी थोड़ी मुलाकात साढ़े आठ तक हई। साईं, आज दा प्रोग्राम उम्मीद है तुआकू पसंद आया हो। अगर तुम्हारे भिरा को कोई ऐसी गाल थी है जी तुआकू नागवार गुजरी हो तो अपने भिरा को माफ कर लिया। तो साईं, अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखो, तो ईद दियाँ खुशियां इंजॉय करें।

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: बीमारी हक दे अवेला जी सुनत अमल ले। अवेला जी सुनत अमल ले।
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली यो डेर गर्जिदली कड़ीदली यो
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ मायूसके गई माँ अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे
3: और द नुरु मालूमातों दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404
4: छाया निम लेरे कई और जवान की चिकम दिल्लू जीना को रावती हुई अगम बिल्कुल सफा कई और दन न दाता उसका रिजल्ट पखारा कई।

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और ऑयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते।

खबर सुनकर लरस उठते हो साहिल पर, मैं ऐसे दिलों को ना खुदा कह दूं ये मुश्किल है। अमीर जो है नजरों में बुखारी सा कलंदर हो।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। You are listening Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

इसी तरह से अगर आप घर में सोए हुए हैं, रात का वक्त है, तो आपको लगता है कि कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, और वो उसका मकसद भी ठीक नहीं है उसके, क्योंकि जाहिर है रात को अगर कोई आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तो उसके अगर इरादे ठीक नहीं है और वो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वार्न करें, अगर वो नहीं रुकता तो आप उसको शूट कर दें। ये भी कानून आपको इख्तियार देता है कि आप उसको शूट कर सकते हैं। इसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, आपके घर वाले आपके साथ हैं, खवातीन आपके साथ हैं, और कोई खवातीन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और आपको अंदेशा है कि खुदा न ख्वास्ता ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, तो अगर आपके पास असलहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो आप उसको शूट कर सकते हैं ऐसे शख्स को। ये कानून आपको मुकम्मल इस चीज़ की इजाज़त देता है, तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है, बल्कि कानून आपको इस हद तक भी तहफ़ फराम करने की इजाज़त देता है कि अगर आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कि गली में, मोहल्ले में, कहीं पे भी, रोड पे कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को लूट रहा है, आपको नहीं लूट रहा, या किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, आपको नजर आ जाता है, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो जो मुलजिम है, वो जो काम कर रहा है, उसको शूट कर सकते हैं। लेकिन शर्त उसके लिए क्या है कि आपके पास अगर असलहा हो तो वो लाइसेंस्ड असलहा हो। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के लिए असलहा साथ रखें, लेकिन लाइसेंस्ड असलहा। अब ये हमारे इलाके में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजाब में घूम रहे हैं, आप लाहौर में हैं, आप वहाँ तो रात को 2-3 बजे आप घूम रहे हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं होता, लेकिन हमारे इलाकों में आजकल जो है वो हालात बहुत संगीन नौयत इख्तियार कर चुके हैं। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी जो मैंने समझा कि मैं अपनी आवाम तक रखूँ, आवाम को बताऊँ कि जी जो तहफ़ फराम करना है वो रियासत की जिम्मेदारी है, और अगर रियासत उसमें नाकाम होते हुए हमें नज़र आती है या नज़र आए तो वहाँ पे आवाम अपने आप को ख़ुद भी तहफ़ फराम कर सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं बयान करना चाहूँगा वो है एतबार। आजकल आप यकीन, एतमाद, एतबार किसी पे भी ना करें। आजकल आपका दोस्त, आपका करीबी जानने वाला वही आपका दुश्मन हो सकता है, वही आपको एतमाद में, एतबार में संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में ऐसा वाकया हुआ कि मुझे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो मेरे करीबी लोगों ने पहुंचाया। अब वो चूंकि आपको एतमाद होता है, आपको यकीन होता है, आप खुद को जो है वो तैयार नहीं रखते किसी भी ख़तरे के लिए, और आप उस एतमाद में जाके जो है ना वो उसमें चले जाते हैं, उस फ्लो में, और फिर आपको संगीन नुकसान का। और आजकल टांग में अगर आप देखें तो हर दूसरा तीसरा जो वाकया हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई करीबी जानने वाला दोस्त अहबाब में से कोई ना कोई शामिल होता है। तो इस तरह से जो है आपने तहफ़ फराम तो खुद को करना है, तहफ़ खुद का तहफ़ करना है, लेकिन साथ में अपना अकल भी इस्तेमाल करना है, अक्ल व फहम से काम लेना है, आपने दिमाग अपना खुला रखना है और सोच समझ के आपने फैसला करना है। ज़्यादा जो है वो आपने किसी पे एतमाद नहीं करना, किसी पे यकीन नहीं करना, वरना आपको आजकल के हालात में ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

अच्छा, तो FIR दर्ज करवाते वक्त अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि बहुत सारे वकूए नामालूम होते हैं, किसी ने देखा नहीं होता, लेकिन पश्तों का इलाका है, रिवाज है, लोगों को पता जरूर चल जाता है कि मेरा मुजरिम कौन है, किस कौन मेरा दुश्मन है, किसने मेरे साथ ये काम किया है। लोगों को इस चीज़ की खबर ज़रूर होती है कि मेरे प्यारे को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है, मेरे साथ ये जुल्म ज्यादती करने वाला कौन है। लेकिन चूंकि जिसने आपको नुकसान पहुंचाना है उसने अकेले में ढूंढ के पहुंचाना है, तो चश्मदीद गवाहान जो हैं वो पराए लोग होते हैं, अपने बहुत कम होते हैं। लेकिन कानून कहता है, कानून की मंशा है कि गवाहों के बगैर आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। पाकिस्तान में सजाएं वैसे ही कम हैं, 98% केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। उसमें जो 2% लोग हैं जो सजा होते हैं, उनमें चश्मदीद गवाह का होना बहुत जरूरी है। अब चश्मदीद गवाह जब आता है अदालत में या FIR में, तो उसने कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। वो सबसे पहले कि उसने जब गवाही देनी है तो वो गवाही उसने ऑन ओथ देनी होती है, यानी कसम उठा के देनी होती है, उसने अल्लाह की कसम उठा के फिर उसके बाद वो गवाही देनी होती है। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर हम गवाह डाल देंगे तो कल कला झूठी कसम उठानी पड़ेगी, झूठी गवाही देनी पड़ेगी, तो फिर हम क्या करें। तो भाई ये कानून की मंशा यही है, कानून का बुनियादी उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है कि गवाही आपने कसम खा के ही देनी है, और गवाह नहीं है तो आपको आपका मुलजिम भी पता है, वो छूट भी जाएगा। तो यहाँ पे छूट झूठी गवाही का फिर आंसर सामने आता है, तो उसकी किसी मौलवी साहब से आप पूछें, वो आपको सही वजाहत देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कानून बताने बैठा हूं जो कि इंतहाई जरूरी है। गवाही क्यों जरूरी है कि अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं और कुरान में अल्लाह पाक ने जो जुराइम और उनकी सजाएं तजवीज की हैं, बताई हैं, तो उन सजाओं को दिलवाने के लिए अल्लाह पाक ने एक क्राइटेरिया भी सेट किया है, और वो क्राइटेरिया ये है कि जी आपने अगर किसी जुर्म को साबित करना है और उस पर हद का लागू होना, हद क्या मतलब, वो सजा जो अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत में बता दी है, उस सजा को दिलवाने के लिए क्या तरीका कार फॉलो किया जाएगा, ये हमें कुरान बताता है। अब अगर आप मोटी मोटी मिसाल लें और जिना की एग्जांपल लें, मिसाल को अगर आगे रखें, तो कुरान कहता है कि अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसको संसार किया जाए अगर वो शादीशुदा है। अब संसार करने के लिए जो क्राइटेरिया बता दिया है वो 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे जो पूरा उतरते हों उनके बारे में बता दिया। अब 4 गवाहान तस्कियतु शहूद पे पूरा उतरने के मुताबिक मतलब यह है कि 4 लोगों ने उनको जिना करते हुए देखा है, और वो 4 मर्द जो हैं वो बड़े नेक और अच्छे लोग हैं। अब इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखने का मकसद ये था कि कोई किसी पे झूठा इल्जाम जिना का लगा के उसको सजा ना दिलवाए। तो आजकल के दौर में आपको ऐसे 4 लोग कहां मिलेंगे। तो इससे हमारे जो कानून है पाकिस्तान का, वो इसी चीज से जो है इनसार लेता है, इसी चीज से तकवियत लेता है कि जहां पे कुरान ने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा है किसी जुर्म को साबित करने का, वहां पे हमारे कानून ने भी फिर सख्त क्राइटेरिया रखा है जुर्म को साबित करने का। क्योंकि कानून ये देखता है कि एक बेगुनाह अगर सजा हो जाए खुदा न खास्ता, तो उससे बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को बरी कर दें। एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है कि आप 100 गुनहगारों को सजा दे दें। मैंने बारहा अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस में देखी ये बात, यानी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, शायद इतना 3.5-4 साल ही मैं प्रैक्टिस से मुझे जुड़े हुए हो गए। इसमें एक चीज मैंने देखी है कि मेरे सामने कोई तकरीबन 10-12 ऐसे केसेस गुजरे होंगे जिसमें सजाएं हुई हैं, कत्ल के केसेस जिसमें उम्र कैद, एक आध अगवा का केस था जिसमें 10 साल सजा हुई। बाकी कत्ल के केसों में जो सजा हुई है, तो वो सजाएं मैंने देखी, तो उन सजाओं में तकरीबन हमारे पास 10 केसेस मुझे याद पड़ते हैं। उन 10 केसेस में एक केस जो मेरे सामने गुजरा, उसमें 100% बेगुनाह शख्स को उम्र कैद की सजा हो गई। अब वहां पे बेगुनाह शख्स जो है वो सजा हो गया, कत्ल किसी और ने किया था, उसकी फैमिली में से दावा उस पर हो गया, बाद में साबित हो गया केस और उसको सजा मिल गई। अब ऐसी सूरत में अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी जाती है, तो ये पूरे के पूरे हमारे सिस्टम पे एक धब्बे की सूरत में नुमा हो जाता है। इसीलिए रियासत की कोशिश होती है कि वो बेगुनाह को सजा देने के बजाय 100-150 गुनहगारों को खैर छोड़ दे।
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل کر لیا ہے تو وہ سال ڈیڑھ جیل میں گزارے اور اس کے بعد اس کو آپ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا دلوانے کا کرائیٹیریا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس تمام تر کرائیٹیریا پہ آپ پورے اتر آتے ہیں, وہ تمام تر لوازمات آپ پورے کر لیتے ہیں, تو پھر سزا آپ کو دلوائی جائے گی اور اس کی بنیاد آپ خود رکھتے ہیں. پھر لوگ وکیلوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ججوں کو گالیاں دیتے ہیں, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں کہ ملک میں سزائیں نہیں ہیں, عدالت ہے. کوئی کہتا ہے عدالت ایک بھوسے کی مانند ہے, وہ اٹھاؤ جیب میں ڈالو چلے جاؤ. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, مختلف قسم کی آراء جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں لوگوں کی. لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ریاستی مشینری کو جو سٹارٹ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے, اور آپ نے سرے سے کیس کی بنیاد غلط رکھی. اگر آپ ایف آئی آر درج کرنے گئے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ قتل ایک نے کیا ہوتا ہے, اس کے گھر کے تین بندے بھی ساتھ میں نومینیٹ کر دیتے ہیں, بے گناہ, آپ کا کیس کا بیڑا غرق وہیں پہ ہو جاتا ہے. چشم دید گواہ نہیں ڈالتے, ڈر کے گواہی نہیں دیتے کہ جی قسم اٹھانی پڑے گی, کیس کا بیڑا غرق وہاں پہ ہو جاتا ہے. پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, پشتوں کا علاقہ ہے, تج مج والی بات ہے, یہ ہے وہ ہے, نہ نہ نہ یہ وہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی غیرت سامنے آ جاتی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا جاتا, میں اپنا بدلہ خود لوں گا, زبق پلق پت بدلا پلا خالا. اس میں بھی بہت ساری چیزیں خرابی کا سبب بن جاتی ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ پولیس تھانے چلے گئے ہیں, آپ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں, تو ایف آئی آر کو سوچ سمجھ کے درج کروائیں, کیونکہ آپ کے پورے کیس کی جو بنیاد ہے وہ اسی ایف آئی آر سے شروع ہو.

इसके अलावा जो हमारे पास दीवानी नौयत के बहुत सारे मुकदमात आते हैं, फैमिली केसेस को फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो दीवानी नौयत के मुकदमात आते हैं उसमें एक और बहुत बड़ा मसला दरपेश होता है। मसला ये है कि लोग स्टैम्प पेपर पर ज़मीन खरीदते चले जाते हैं, आगे बेचते चले जाते हैं, असल मालिक जो है वो अपनी जगह कागजात में वैसे ही पड़ा होता है। हमारे टांग शहर में ऐसे बहुत सारे भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं जिसमें जमीन अभी तक नवाब के नाम पे पड़ी हुई है, जो असल नवाब था टांग का। अब बहुत सारे लोग उठ के मुकदमात कर रहे हैं, उस जमीन को क्लेम कर रहे हैं, हालांकि वो जमीनें बिक चुकी हैं, नवाब साहब ने बेच दी होंगी, लोगों ने घर, और लोग 50-50, 40-40 साल से उन घरों में रह रहे हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास घरों के कागजात नहीं है। अब जब घरों के कागजात नहीं है लोगों के पास, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जब आपके पास घर का कागज ही नहीं है, आपके पास घर की कोई रजिस्ट्री नहीं है, आपने अपने नाम पे मुंतकिल नहीं किया, तो कल कला अदालत ये देखती है कि अच्छा ये तो उस बंदे के नाम पे पड़ा हुआ है जो असल मालिक था, तो अदालत जो है हो सकता है आपका दावा खारिज कर दे और उसको उसका घर वापस दिलवा दे, अगर वो ये साबित कर दे कि ये इसने बोगस तरीके से कब्जा किया हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वक्ती तौर पर इंतकाल की फीस से बचने के लिए, वक्ती तौर पे रजिस्ट्री की फीस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं भाई, लोग स्टाम्प पेपर पे घर खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, इंतकाल की तरफ नहीं जाते, रजिस्ट्री की तरफ नहीं जाते कि फीस ज्यादा है। फीस को अगर चाहते हैं कि फीस कम हो तो आप खुद को फाइलर कर लें। फाइलर करना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, ना ही आपके लिए कोई उससे कोई नुकसान का सबब बनता है। आप खुद को फाइलर करें, फाइलर करने के बाद रजिस्ट्री इंतकाल करवाएं, थोड़ी सी फीस पे जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाएं। इसमें एक और बहुत बड़ी तकलीफ होती है, आपने एक शख्स से जमीन खरीद ली, वो जमीन आपने स्टाम्प पेपर पे खरीद ली, कब्जा आपके पास है, आप इंतकाल नहीं कर रहे फीस से बचने के लिए। कल कला वो शख्स मर गया, वो जैसे मरेगा उसका विरासती इंतकाल होगा, जब विरासती इंतकाल होगा तो वो जमीन एक शख्स से तकरीबन 10-15 लोगों में तकसीम हो जाएगी कागजों में। अब जब आप इंतकाल करवाएंगे तो आप 10 लोगों से फिर इंतकाल करवाएंगे, और 10 लोग आपको मुख्तलिफ जगहों पर अंगूठे लगा के देंगे, आपके साथ कोई आएगा कोई नहीं आएगा, मसले। तो ये दीवानी मुकदमों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फैल जाती हैं, बहुत सारी गलतियां जो हैं दीवानी मुकदमों को खराब करने में लोगों की अपनी होती हैं। लोग खुद इतना एहतियात नहीं बरतते, लोग खुद वहां पे जो है इस तरह के काम नहीं करते, कल कला फिर कानूनी पेचीदगियों का सामना होता है। क्योंकि अगर वो शख्स मर गया जिसके नाम पर जमीन है या घर है या रजिस्ट्री है और आपने अपने नाम पर मुंतकिल नहीं की हुई, तो घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए आप अदालत से रुजू करेंगे, अदालत आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करेगी, उसमें आपके तकरीबन 8 माह 9 माह 1 साल निकल जाएगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो तमाम घर जो है रजिस्ट्री होगा उसके तमाम बच्चों के नाम पे। जब बच्चों के नाम पे हो गया, लेट से उसके 8 बेटे हैं 7 बेटों के नाम पे 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों के नाम पे हिस्सा रजिस्ट्री हो जाएगा, उसमें 4 बेटियां शादी हैं, कोई कराची में बैठी हुई है, कोई जॉब में बैठी हुई है, कोई पराचिनार में बैठी हुई है, कोई वजीरिस्तान में बैठी हुई है, किसी बेटे की शादी है वो दुबई में होता है, कोई सऊदी अरब में होता है, कोई कतर में होता है, कोई टांक में होता है। अब आप इन सबको यकजा करें तो ये आपको जो वो आपने वहां पे 1-1.5 लाख रुपए बचाने के लिए उस वक्त रजिस्ट्री नहीं की होती, फिर बाद में आपको उसी रजिस्ट्री को करवाने के लिए उसके ट्रिपल पैसे लगवाने पड़ते हैं, 4 गुना 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं, और तकलीफ का सामना। एक एक को मिन्नत करोगे, उसमें एक भाई इनकार ही होगा कि भाई मेरे बाप ने तो ये घर बेचा ही नहीं था, फिर आप क्या करेंगे? कब्जा आपके पास हो भले ही, कागजों पे तो नहीं है। तो ये मुझे देखने और सुनने वालों से मेरी इस्तदा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी जमीन की लेन देन करें, घर खरीदें, जमीन खरीदें, दुकान खरीदें, तो सबसे पहला काम, या गाड़ी खरीदें, अक्सर लोग गाड़ी मोटरसाइकिल, मेरे अपनी मोटरसाइकिल मेरे पास है, लेकिन वो लकी किसी बंदी के नाम, बंदे के नाम पे, अब मैं कहां उसको ढूंढता फिरूंगा कि लकी में वो कौन था, किसके नाम पे थी। तो ये सबसे पहला अमर जो आपने करना है, सबसे पहली चीज जो आपने करनी है, कुछ भी खरीदने के बाद, घर खरीदा, जमीन खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदा, गाड़ी खरीदी, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फिल फोर उसको अपने नाम पे मुंतकिल करना है। आपके नाम पे होगी तो आपको फायदा, आपके नाम नहीं होगी आपको नुकसान, और उस नुकसान का जो बड़ी बात है नुकसान की, वो क्या होगी कि आपकी जो ओनरशिप है वो डिस्प्यूट हो जाएगी, डिस्प्यूटेड हो जाएगी, उसमें तनाज़ा आ जाएगा, और कर कला जब आप वो चीज़ बेचना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। होप सो आपको मेरे
پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قانونی مسئلہ ہے میرا رابطہ نمبر نوٹ کر لیں 03008999852 03008999852 اس پہ کال کر کے آپ جو ہے میرے سے اپنے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں. باقی اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات رہے گی آپ سے اگلی اتوار کو دن 12 سے 1 تک. خدا حافظ.

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज़ है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: 不会不大
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
3: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क

Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Deegan Radio Program 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tanka. आप तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसर नचर पाकिस्तान की, ये आवाज है खलील ताबे शवान की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है सेहत की, और ये आवाज है शिफा की। जनाब सुपहर के 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही जनाब आपको अपने इलाके के रेडियो स्टेशन के ऊपर ये आवाज ये प्रोग्राम सुनने को मिलता है कि जिसका नाम है केसन केसन टी टाइम शो। जनाब क्यों रखा है हमने इसका इतना प्यारा नाम टी टाइम, क्योंकि जनाब तकरीबन हमारे इलाकों में इसी टाइम में जो है चाय पी जाती है, और चाय जनाब कहते हैं कि धोखे के बाद दूसरी बड़ी चीज है जो आपको जगा देती है, जो आपकी आंखें खोल देती है। तो जनाब उम्मीद है कि इस वक्त आप सभी लोगों की आंखें जनाब जो है वो खुल चुकी होंगी, क्योंकि जनाब बहुत सारी नींद आप कर चुके होंगे, ढेर सारी थकावट को दूर कर चुके होंगे, और चाय के एक कप के साथ, चाय के एक प्यारी के साथ जी जनाब अपने रेडियो को ट्यून करते हुए, अपने इलाके के रेडियो को ट्यून करते हुए, पहाड़पुर में है तो रेडियो पैगाम, डेर इस्माइल खान में है तो ग्लोबल एफएम 91, और अगर टांग में है तो रेडियो अमन को ट्यून करके अपनी चाय का मजा इस प्रोग्राम के साथ दोबारा करने वाले हैं। जनाब मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान, और आप लोगों की खिदमत में हर रोज हाजिर होते हैं 4 से लेकर 8 बजे के इस बिल्कुल जी बराह रास्त लाइव ना लाइव शो के अंदर जनाब, और आप मुझे सुनते हैं, और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मेरी बातों को सीरियस लेकर हमारे प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं, और हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद क्या करते हैं जी जनाब, इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है जी जनाब, इस्तेमाल करने के बाद इन प्रोडक्ट्स का आपके ऊपर इफेक्ट आता है, आप लोगों को रिजल्ट मिलता है, और धीरे धीरे आप उन लोगों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं जिनको हम प्यारा कहते हैं, बल्कि ढेर सारा प्यारा कहते हैं। और जनाब प्यारे आप खूबसूरत क्यों नजर आए, नजर ना आए, प्यारे आप क्यों ना लगे, कि जबकि केसन ने ही आपको बताया है कि जनाब प्यारा लगना तो आप सबका हक है,

जनाब, चाय के कड़क कप के साथ मैं तो प्रोग्राम कर रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं है क्या आपके हाथ में प्याली चाय की आ चुकी है, आप कब का चाय चाय का कप आ चुका है या नहीं आया, लेकिन मेरे सामने मेरी एनर्जी आपको बता रही होगी कि कोई कड़क सी चाय जो है मुझे मिल चुकी है भाई।

जनाब, आप लोगों के साथ पूरा एक घंटा, और एक घंटे के अंदर हमारी जो कहानियां हैं भाई वो बहुत लंबी हैं और तवील हैं, क्योंकि किशन के पास जो प्रोडक्ट्स है ना जनाब, प्रोडक्ट्स की डिटेल बहुत लंबी है और उन प्रोडक्ट्स को आपको इंडिविजुअली हर रोज बताना जी बहुत जरूरी होता है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके कि केसर नेचुरल पाकिस्तान जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो कि हर कुछ अरसे के बाद एक नए शहर के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हो रही होती है, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग जो होते हैं, जिनके पास खरबों रुपए होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा रकम होती है, तो उनके लिए आसान होता है कि टीवी के ऊपर इश्तेहार चला दें, लाखों का इश्तेहार, क्योंकि वहां पर जो होता है जो रिसेंटली हमने पता किया था इश्तेहार का, तो जनाब वहां पर लाखों का हिसाब होता है, यानी कि आपका जो 30 सेकंड है वो आई थिंक 2.5 लाख रुपए के बनते हैं, यानी कि एक 30 सेकंड का जो इश्तिहार चलता है वो तकरीबन 2.5 लाख का होता है, तो करोड़ों रुपए में आपको एडवर्टीजमेंट करानी होती है, और उससे फिर ये फायदा होता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी कंपनी मशहूर हो जाती है। ठीक है जनाब, हम जैसे जो जीरो से स्टार्ट होते हैं लोग, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो रेडियो का सहारा लेकर हम वक्तन फवक्तन जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनी को लॉन्च कर रहे होते हैं, क्योंकि एक साथ पूरे मुल्क के अंदर कंपनी को लॉन्च करना, उसके लिए आपके पास खरबों रुपए होने चाहिए, खरबों रुपए का स्टॉक होना चाहिए, और फिर हर शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर, और हर डिस्ट्रीब्यूटर पर करोड़ों का हिसाब, वो एक लंबी कहानी होती है। तो हम भी ऐसे ऐसे आप लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह ताला के फजल करम से जो है स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और पहले पहले डेर असमिल खान, देन पहाड़पुर के इलाके, देन बनू, देन अभी टांक हम आपके पास मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि एट ए टाइम आपको हमारे इश्तेहार जो है वो टीवी के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर केसर नेचुरल पाकिस्तान अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई बड़ा शहर याद नहीं है कि जिसके अंदर हमारी सप्लाई, हमारा ऑनलाइन आर्डर ना जा रहे हो, यानी कि तकरीबन बड़े शहरों इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा, उस दिन कराची से यकीन करें एक फैमिली पहले उन्होंने हमसे ऑनलाइन मंगवाया, और बेसिकली कंपनी मशहूर किस तरह होती है, अब एक डेर असमिल खान है या टांक है या पहाड़पुर है, तो वहां पर आपके जानने वाले पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, तो फिर क्या होता है कि जब रिश्तेदार आपके रिजल्ट्स को देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या चीज, तो फिर इस तरीके से लोग ऑनलाइन मंगवाना शुरू हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी जो है प्रोडक्ट्स जा चुकी हैं, और रिपीट पर रिपीट ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है जनाब, रिपीट पर रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, और क्यों रिपीट होते हैं कि लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इस कंपनी के इश्तेहारात पूरी आपको टीवी के ऊपर भी नजर आ रहे होंगे, और सारे के सारे यकीन कीजिए, क्या इन बड़े शहरों के अंदर कंपनियां बड़ी नहीं है या उनके पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जब हमारी प्रोडक्ट जाती है तो वो बार बार मंगवाते हैं, यहाँ तक कि कराची से यहाँ तक लोग मंगवाते हैं, और फिर चार्जेस बाजू का ज्यारत तक जो है डबल डबल चार्जेस पे करते हैं और हमारी चीजें मंगवाते हैं। वजह क्या होती है कि जब आप प्योर इंग्रेडिएंट, खालिस अज्जा से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फिर लोगों को इस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। आज मुझे एक कॉल आई हुई थी पहाड़पुर एफएम से, एक हमारी यूजर हैं आई थिंक किरण उनका नाम है, और वो कह रही थी कि भाई मैंने पहले आपके प्रोडक्ट खुद यूज किए, और उसके बाद मैंने 2-3 सहेलियों को दिए, फिर उसके बाद लोगों ने इतना मुझसे मांगना शुरू किया कि अब मैं ना एक एक दर्जन, 2-2 दर्जन आपके प्रोडक्ट पहाड़पुर के डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाती हूँ, और अब मेरे पास जो है वो आपका एक एक दर्जन जो है

0: 10 दिन भी नहीं जाता, यानी कि इतने ज्यादा यूजर बन चुके हैं। और जिस तरह वो फ्रिक्वेंटली हमारे प्रोडक्ट्स का नाम ले रही थी, तो मुझे 100% यकीन था कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे यूज किए हैं उन्होंने, और सारे के सारे कहते हैं कि ये आपकी जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, शिफाए दर्द है, या आपका हाजमा कंट्रोल सिरप है, वेट कम पेट कम है, गो पिंपल है, ये तो लोग छोड़ते नहीं, आते हैं और फौरन ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उन्हें कह रहा था कि आप शो के अंदर भी कॉल करें और अपना फीडबैक दें ताकि हमारी मोटिवेशन मजीद बढ़े। तो बात निकली थी कि ऐसा ऐसा आप लोगों को बताते हैं, इतनी बड़ी प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए हैं। और
1: चेहरे पे
0: जी जनाब, तो हमारे चार किस्म के फेस वॉश हैं जनाब, ठीक है जनाब, चार किस्म के फेस वॉश। आज कौन आया हुआ था हमारे, जिस टाइम में मैं बैठा था, तीन चार फीमेल आई हैं, ठीक है,
2: चार
0: केसर शॉप डेर रसमिल खान में
2: आई, ग्लूटा वाइट संवलापन भगाए,
1: हर फिकर का हल,
0: हर फिकर का हल आपके पास केसन के पास।

लेकिन अब हर फिक्र का हल हर रंग को बेहतर कर सकती है केसर नेचुरल पाकिस्तान, क्योंकि हमारे माहरीन जो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हर स्किन के मुताबिक होते हैं, और जो बंदा अपनी स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा उसको वैसे ही रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। तो मैं बड़ी खुशी होती है कि लोग हमारी बात को सीरियस भी लेते हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। जैसे हमारे ग्लोबल एफएम 91 के जो लोग सुन रहे होंगे, दानिया आज अगेन हमारी शॉप पर आई हुई थी और वो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने हम जो बता रहे हैं ना कि गर्मी के अंदर आपको क्या लगाना चाहिए कि आपकी स्किन निखरी निखरी रहे, तो वो उसी के मुताबिक जो है लवली फेस वॉश, प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश और ब्यूटी स्प्रे लेके गई है। तो इंशाल्लाह इससे पहले भी इन्होंने बहुत कुछ इस्तेमाल किया होगा और वो कह रही थी कि मैं क्रीमें लगा लगा के थक गई हूँ। तो मैंने कहा भाई क्रीम के गर्मी के अंदर जो होता है ना, गर्मी के अंदर क्रीमें आपको रिजल्ट वैसा नहीं देती हैं जैसे कि आम मौसम में आपको देती हैं। मैं बारह आपको ये बात बता चुका हूँ, जितने जल्दी आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, जितने जल्दी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे उतनी जल्दी आपको जो है स्किन रूटीन आपकी चेंज हो जाएगी। गर्मी के अंदर मैकेनिज्म ये होता है कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से सेबेशियस ग्लैंड जो होता है आपके बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ऑयल और पसीना बहुत ज्यादा रहता है और इसी की वजह से गर्मी में आपकी स्किन काली हो जाती है। लेकिन अगर आप इसका तदारक करेंगे, अगर आप ये बात सोचेंगे भाई मेरी स्किन काली सर्दी गर्मी में हो रही है तो मैं क्रीम इस्तेमाल करूं, नहीं, उसका हल क्रीम तो है, क्रीम तो आपने रात को लगानी है, लेकिन डे टाइम में उसकी ट्रीटमेंट ये है कि डे टाइम में आप अपने स्किन का ऑयल सबसे पहले कंट्रोल करें, ऑयल को कंट्रोल किए बगैर आपको गर्मी के अंदर क्रीम रिजल्ट नहीं देगी, भी नहीं देगी, नहीं देगी। जब तक आप अपनी स्किन के ऊपर डे टाइम ट्रीटमेंट को ओके नहीं करते हैं, जब तक आप डे टाइम में अपने स्किन के ऊपर ऑयल को कंट्रोल करने का प्रोसीजर नहीं करते हैं, आपको गर्मियों में क्रीमें रिजल्ट नहीं दे सकती हैं। ठीक है जनाब, तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि जनाब सबसे पहले गर्मी के अंदर ये जो 6-7-8 महीने हैं गर्मी के, अपने आप को फेस वॉश के हवाले कर दीजिए। ठीक है जनाब, एक मियारी एक अच्छे फेस वॉश, एक फोमिंग फेस वॉश, क्रीमी फेस वॉश, मिल्की फेस वॉश, ये टॉप क्वालिटी फेस वॉश होते हैं। जैसे क्रीम में से फेस वॉश निकालें तो वो फोम की तरह निकले। ठीक है जनाब, फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल जो है, जैसे केसन के सारे फेस वॉशेस हैं, इनको आप यूज करके आप अपने स्किन के ऊपर ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑयल को कंट्रोल करते ही आपको 3 दिन के अंदर समझ आएगी कि जैसे आपका ऑयल कंट्रोल हुआ है उसके साथ ही आपकी स्किन काली नहीं बल्कि उसके ऊपर निखार आना शुरू।

जनाब, आपकी खूबसूरती को संवारने के लिए ये कंपनी आई है आप लोगों के पास, और हमारे माहरीन की बनी हुई हर चीज आपको इम्प्रेस करेगी, आपको मुतासिर करेगी, क्योंकि जनाब मौसम के मुताबिक और आपकी स्किन के मुताबिक हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। और जब आप इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता, हर कोई बंदा जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाता, जो एलीट क्लास के लोग होते हैं वही डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब गर्मियां हैं, मैं अपनी स्किन केयर रूटीन को कैसे बेहतर करूं, या क्या तो भी डॉक्टर अपने चौंचले बताते हैं कि भाई इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, हर कोई डॉक्टरों के पास नहीं जाता। तो भाई ये आपके पास एक स्किन स्पेशलिस्ट कंपनी है, और अगर हमारी गाइडलाइंस को लेकर आप सीरियस रहेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे हमारे स्किन केयर रूटीन को, तो भाई हम जिम्मेदार हैं आपकी स्किन के, कि आपकी स्किन कैसे फिर अच्छी नहीं होती, कैसे आपका स्किन के ऊपर आपका निखार नहीं आता, कैसे आपका चेहरा फ्रेश फ्रेश नजर नहीं आता। तो गर्मी के अंदर जनाब केसन के फेस वॉशेस का इंतखाब आपको बहुत ही प्रीमियम लुक दे सकता है। लवली फेस वॉश लड़कियां इस्तेमाल करें इसको, क्योंकि ये खास तौर पर जो है वुमेन स्ट्रक्चर को उसकी स्किन के मुताबिक बनाया गया है। ठीक है जनाब, इसके साथ साथ जो है हमारा गो पिंपल फेस वॉश है, और सुबह भी मैं मॉर्निंग शो में बता रहा था पहाड़पुर वालों को, और क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि भाई जो जरासीम होते हैं ना, जरासीम जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर फंगस है, फंजाई है, ठीक है जनाब, तो बेसिकली आपके स्किन के ऊपर जो चीज एक्ने का बायस बनती है वो फंगस होता है, ठीक है जनाब। तो फंगस बहुत जल्दी अंडे देता है आपकी स्किन में, जब आपकी स्किन के ऊपर ऑयल मौजूद होता है और पसीना दोनों एक साथ जब आपके पोर्स के अंदर ठहरते हैं, ठीक है ना, ये तो नहीं होता ना कि आप हर वक्त पसीने को साफ करते रहें, बाजू का तो आप ऐसी कंडीशन में होते हैं कि आपका चेहरा पसीने से भरा पड़ा होता है, तो उसी में जनाब फंगस पैदा होता है और आपको पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई जिसकी भी स्किन, जिस भी फीमेल की स्किन एक्ने प्रोन है, ठीक है जनाब, उसको दाने निकलते हैं, तो भाई दाने निकलने के बाद उनको ठीक करना और उनके निशानात को खत्म करना बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी परेशानी होती है, और इलाज से बेहतर जो है हमेशा परहेज होती है। तो ऐसे लोग भाई जिनको पता है कि उनकी स्किन एक्ने प्रोन है, तो वो गो पिंपल को अपने पास रखें। हमारा गो पिंपल में साबुन भी है, गो पिंपल का फेस वॉश भी है। जिसकी स्किन एक्ने प्रोन है तो भाई वो तो 100% हमारी ये जो प्रोडक्ट है केसन गो पिंपल, जिसकी स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, तो गो पिंपल फेस वॉश या साबुन को एक साथ अपने साथ इस्तेमाल करके, यानी कि आप या साबुन ले लें गो पिंपल का या गो पिंपल का सोप, तो आपकी स्किन के ऊपर इन गर्मियों में जनाब हम गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि अब है आपके पास केसन, तो हम आपको बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट गो पिंपल को इस्तेमाल करते हुए आपकी स्किन के ऊपर कभी दाने शाने जी पिंपल्स नहीं आ सकते।

बस किसन। जी जनाब, ये तो एक्नी स्किन वालों के लिए है, लेकिन जिनकी स्किन को दाग धब्बे हैं तो जनाब वो इस्तेमाल करें केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। ठीक है जनाब, ये फेयरनेस फेस वॉश है, फेयरनेस फेस वॉश है। वैसे तो गो पिंपल भी फेयरनेस ही है, ठीक है जनाब, लेकिन उसके अंदर एंटीसेप्टिक जैसे कि टी ट्री है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड है, जैसे कि नीम है, टी ट्री प्लस नीम प्लस लेमन और हल्दी के साथ बना हुआ है। लेकिन ये जो हमारा प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है, ये बेसिकली व्हाइटनिंग और फेयरनेस फेस वॉश है, ठीक है जनाब। तो इसको हर किस्म के लोग लगा सकते हैं, जिनको सिर्फ ऑयल का इश्यू है लेकिन उनके स्किन के ऊपर पिंपल्स नहीं है, तो भाई वो भी लवली फेस वॉश लगाएं। बेसिकली ये दाग धब्बों को खत्म करने वाला फेस वॉश है, जिसको हम कहते हैं केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। और गो पिंपल किसके लिए है जनाब, याद रखिएगा, गो पिंपल जो है वो अपनी प्रोन स्किन के लिए है, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन जिनकी रंगत सांवली है, भाई सांवले लोग हाजिर हो।

0: केसन जी जनाब, केसन केसन और अब बस केसन, क्योंकि जनाब ये वो कंपनी है जो आपकी खूबसूरतियों को बढ़ाती है। कुदरत का सलाम, फितरत का सलाम और आपके लिए सेफ प्रोडक्ट्स।
1: द केसन नेचुरल्स रिख्तिने व्यार दे द फितरत लजड़ स्ताख कुलात यो सौगात केसन नेचुरल्स स्ताद बावर नशा पहर चांस की के ये मीना और रणा।

0: भूल जाओ जी जनाब, केसर नेशनल पाकिस्तान और मैसेजेस आप लोगों के बिल्कुल जी धड़ाना शुरू हो गए हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि आप लोगों के पास मौजूद हैं, और एक दफा फिर से बताते चलें क्योंकि हर रोज हमें कहीं ना कहीं कोई नया बंदा सुन रहा होता है। तो जनाब हमारे नंबर नोट कीजिएगा 03449363366, 03449363366। जी जनाब ये हमारा नंबर जनाब आप लोगों के पास मौजूद है, दोनों नंबर आप लोगों के पास मौजूद हैं जो आप जो है इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस वक्त पहले कॉलर भी आ चुके हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, हमारा मतलब हमारा
0: नजर नजर हसन दी ग्रेट, क्या हाल है जनाब?
1: सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बस आया हूँ शॉप पर, दो बार हाजिरी दिए अल्लाह के लिए, बस आपकी खुश मसरूफियात और मेरी भी, मैंने माजरत।
0: अच्छा जी, माजरत मुझे करना चाहिए, माजरत मुझे करनी चाहिए कि आप मेहमान हैं, मैं मेजबान हूँ, लेकिन मैंने अपने वादे के मुताबिक वेट किया है और मसरूफियात आपको पता है कि एक एक मिनट जो है कितना मेजरेबल होता है बिजनेस मैन के लिए। है जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ,
0: कोई बात नहीं जनाब।
1: मैंने रिसीव कर लिया ब्यूटी स्प्रे और हाजमा कंट्रोल सिरप, नहीं था पता नहीं मेरी ईद कैसी।
0: ब्यूटी स्प्रे नहीं था बिल्कुल, और हाजमा कंट्रोल सिरप भी नहीं था। तो आपने ऐसा करना है कि आपके इलाके में तो हमारे होलसेलर भी बैठे हुए हैं ना, ठीक है, आपने ईद को खराब नहीं करना, ठीक है। आपने हसन भाई के पास जाना है और हसन भाई से कहना है भाई मेरी ईद नहीं गुजरेगी जब तक हाजमा कंट्रोल सिरप मेरे पास नहीं होगा। हैं जी,
1: वो लाज नहीं आता मैं।
0: हाँ, तो बाकी शुक्रिया आपका। मैं लिस्ट देख रहा था सुबह सुबह, मुझे लिस्ट मिली कि नजर हसन भाई आए हुए हैं और उनकी ये डिमांड है, तो माशाल्लाह वेट कम पेट कम, ऑयल शैम्पू जाफरानी क्रीम सब कुछ लेके जा रहे हैं, सब कुछ लोग केसन का खरीदते हैं। सच्ची में
1: केसन के दीवाने हो गए जी, लोग पूछते हैं मुझे कसम से, दोस्तों ने फोन किया, मैं मजबूर हो के आपके शॉप पर खुद आया हूँ।
0: यानी कि हमने इतने, लोग कहते हैं कि भाई केसन के इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लोग बस एक दो प्रोडक्ट खरीदते होंगे बाकी तो नहीं खरीदते होंगे, ऐसा है?
1: सब प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब चलने वाले आइटम्स हैं और यूजेबल हैं, इंशाल्लाह यूजफुल भी हैं, लोगों को फायदा दे रहे हैं। तो दोस्तों रिश्तेदारों ने मुझे पर्सनली भेजा है, स्पेशली
0: भेजा। अच्छा, मैं क्रीम में देख रहा था, क्रीम आपकी जो जा रही थी, दोनों मेरे प्रोडक्ट हैं, ग्लूटावाइड भी मेरी जान है और केसन जाफरानी फार्मूला भी मेरी जान है, लेकिन आपकी तरफ आपके इलाके में हमारी जाफरानी क्रीम माशाल्लाह जो है बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या रिव्यूज हैं लोगों के वैसे इसके बारे में?
1: ये छा गए, इसने तब्दीली एकदम जल्दी से तेजी से तब्दीली लाई, लोग खुश है ना।
0: अच्छा जी, यानी कि इस क्रीम में बाकी स्किन की काया पलटी है तभी लोग जाफरानी फार्मूला खरीदते हैं हमसे।
1: फीमेल को माशाल्लाह चमका के रख दिया है।
0: अच्छा, आपके मैं देख रहा था फेस वॉश थे आपके ऑर्डर में आज या नहीं थे?
1: थे, मैं लेके जा रहा हूँ।
0: अच्छा, लेके जा रहे, तो माशाल्लाह हमारा ये मैसेज आपका कच्ची कार्डगढ़ में भी पहुंचा हुआ है कि गर्मी में भाई फेस वॉश बहुत जरूरी है स्किन ग्लो के लिए, स्किन के निखार के लिए।
1: इंशाल्लाह इनको मैं जो फौरन वो चला दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी।
0: हाँ,
1: तो फिर ईद 4-5 ईद को फिर और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑर्डर लेंगे और आपको पेमेंट भी करेंगे, खफा नहीं होना सर।
0: हाँ, नहीं, कोई
1: सुनने वालों सब भाइयों बहनों पंजाब ट्रांक और सारे परपुर आपका कीमती टाइम नहीं लेता,
0: बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया
1: सर। कबीर भाई शबरा साहब को भी सलाम,
0: बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। और नजर हसन हमारे साथ पहाड़पुर रेडियो के ऊपर, ये हमारे यूजर हैं, पहले यूजर थे अब रीसेलर भी बन गए हैं। इसी तरीके से लोगों ने कारोबार माशाल्लाह जो है, हम बचत भी ठीक ठाक देते हैं लोगों को, और आपके टांग में हमारी कंपनी अभी इंट्रोड्यूस हुई है और मुझे टांग की कोई 3 फीमेल्स ने रापता किया है कि भाई आपके प्रोडक्ट जो है हम घर के अंदर सेल करना चाहते हैं, बल्कि एक दो का मेरे पास जो है वो एड्रेस भी आया था, अगर मेरी अप्रोच में है तो मैं शेयर कर दूं, क्योंकि उनके पास जो है प्रोडक्ट जा चुके हैं और उन्होंने जो है ले लिए थे। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जरपत खान मंसूर जनरल जी कॉलर हैं हमारे साथ, उनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम खलील भाई।
0: चौधरी साहब, आप यकीन करें अल्लाह को जान देनी है, मैं जैसे स्टूडियो में बैठा हूँ ना यहाँ पर कुर्सी के ऊपर, तो मैंने कहा हमारे चौधरी साहब आजकल किधर गायब है, या तो मैंने कहा जानवर खरीद रहे हैं, सुबह शाम मंडी जाते हैं, हमारे प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहे।
2: खलील भाई यकीन करो, बस वो रिश्तेदार हो गया उनके, अभी भी हम है ना, यकीन करो नौशेरे मोड़ से मैं अभी अभी पहुंचा हूँ, जानवर लेके आया नौशेरे।
0: अच्छा जी, फिर सही मिल गया आपको?
2: उधर तकरीबन 4 मन का जानवर हमें मिला, 2 लाख रुपए।
0: ओहो, 4 मन का?
2: 4 मन का कहता है तो मैं तुझे है ना पिक्चर भी भेज सकता हूँ।
0: माशाल्लाह, आप तो बड़े सस्ते में पड़ गए, आपको तो माशाल्लाह हमने लिया 1,74,000 का और वो 3 मन होगा तकरीबन, तो आपको तो भाई मुफ्त में पड़ गया फिर।
2: नहीं नहीं, यहाँ पे एक और भी खड़ा, 4 मन का है, 2 10 का कह रहा था वो, 2 20 था आखिरी।
0: अच्छा चलो, माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे आपकी कुर्बानी को। और माशाल्लाह ढूंढना चाहिए खूबसूरत जानवर जो है वो, मैं कहता हूँ ये जो हमारी मुहाजिर बिरादरी है ना, इनके तो जानवर देखने वाले नहीं, आप लोगों का आपस में मुकाबला तो नहीं होता कि किसने ज्यादा खूबसूरत जानवर खरीदा है?
2: बस ये तो अल्लाह को पता है, हम तो कहते चीज ले
0: नहीं, ये आप यकीन करें, मैं कहता हूँ कि अगर डेरा इस्माइल खान में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी ने खूबसूरत जानवर देखना है ना कुर्बानी का, तो वो छोटे बाजार का चक्कर लगा के आ जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हर गली के अंदर इतने खूबसूरत जानवर ठहरे हुए हैं, कसम से बंदा कहते हैं कि यार ये कुर्बानी करने वाले इतने प्यारे, देखने को दिल करते। आज भी मैं छोटा बाजार गया हुआ था तो मैंने कुछ वीडियो बनाई, यानी कि मजा आता है उन जानवरों को देखकर, तो अल्लाह ताला कैसे खुश नहीं होगा, इतनी प्यारी कुर्बानी जब ये मुहाजिर लोग करते हैं, हम भी करते हैं सब लोग, लेकिन इनके अंदर जो ये मोहब्बत है ना कुर्बानी वाली की, बहुत ही खूबसूरत जानवर लेते हैं।
2: बिल्कुल खलील भाई, तेरे पड़ोस में, तेरी शाम के पड़ोस में आया कल एक जानवर, आना 6.5 लाख रुपए का आ रहा, कल पहुंच जाएगा चौक आजम से।
0: अच्छा जी,
2: 6.5 लाख रुपए का जानवर देखने लायक है, डबल बेड ऊपर डाल के बैठ जाओ।
0: भाई भाई भाई, क्या बात है जनाब, ऐसी कुर्बानियां तो अल्लाह पाक फिर देखें, इतनी मोहब्बत से जो मोहब्बत आप पेश करेंगे तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके भी हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और बहुत दिनों बाद आप हमारे प्रोग्राम में हैं, आपको ढेर सारा वेलकम भी करते हैं। आप हमारा एक फेस वॉश इस्तेमाल कर भी चुके हैं और हम कहते हैं कि वो सांवलेपन को भगा देता है और उसका नाम है ग्लूटावाइट, क्या ठीक है ये?
2: बिल्कुल जबरदस्त है, जो आपसे मैं यकीन कर फेस वॉश लाया ना, वो इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, कसम खुदा के ऐसा मजा करता है, यानी तो लोगों के फेस वॉश को कभी हिला के देखो तो तू कहेगा ये इसके अंदर है ना कान वाली ड्रॉप भरी हुई है।
0: हाँ, हिलता है वो, खड़क खड़क खड़क की आवाजें आती है। हमारे भी फेस वॉश के अंदर ऐसी सॉलिड किस्म का फोमिंग फेस वॉश होता है कि आपको पता चलेगा कि वाकई यार ये कोई फेस वॉश बनाने वाली कंपनी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ओके की रिपोर्ट है, माशाल्लाह जबरदस्त है, कैसन में कोई चीज की कमी, एक चीज में भी कमी नहीं आएगी, एक चीज का भी तुझे गिल्ला नहीं मिलेगा इंशाल्लाह।
0: इंशाल्लाह नहीं मिलेगा जनाब, हम जब उसके अंदर गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे तो फिर कैसे गिल्ला मिलेगा?
2: वही तो मैं कह रहा हूँ, जब गुंजाइश नहीं छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, गुंजाइश छोड़ोगे तो हर कॉल पे गिल्ला मिलेगा, हर कॉल।
0: यार मुझे किलों से बड़ा डर लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुरखुरू, अल्लाह ताला ने सुरखुरू रखा हुआ है, गिले करने वाले लोग नहीं आते हमारे शो में
2: माशाल्लाह। वो भी देखो इज्जत है, हमारी माँ बहन है सारी, हम ये नहीं कहते अल्लाह माफी दे, आदमी जब पहले अपने घर में जाके बाद में किसी की इज्जत का बुरा सोचे।
0: हाँ बिल्कुल,
2: हमारी वो बहन आई थी, वो कह रही थी की ये करीब जो करीब लेके गई थी मेरे चेहरे पे फट जाती है, हमने उसको बोला था इसमें ग्लिसरीन डालो इंशाल्लाह ये नहीं फटेगी, दोबारा तेरे पास गिल्ला नहीं आया।
0: नहीं, ऐसे ही बिल्कुल, खुश्की अगर किसी को बहुत ज्यादा फील हो तो वो अपनी तरफ से क्रीम के अंदर ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, ऐड करके आप अपने स्किन के मुताबिक से यूज करें।
2: हाँ, करीम में कमी नहीं थी, क्योंकि देखो चेहरा सारों का एक नहीं, किसी के में ऑयल ज्यादा, किसी का इतना खुश्क है। हाँ। कि तेल भी लगा लो ना, तेल भी एक सेकंड में वो तेल का पता नहीं लगेगा जान के ऊपर या चेहरे के ऊपर।
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
2: और कोई तेल लगा लेगा तो उसका शाम तक वो तेल ऐसा बह रहा होता, अगला कहता है ये तेल की घानी में नहा के आया हुआ।
0: बिल्कुल ऐसे, हर किसी की स्किन जो है वेरिएशन के साथ होती है। बहुत शुक्रिया आपका जो जैसे आप आए हमारे प्रोग्राम में
2: भाई, तमाम सुनने वालों को सलाम और आपको भी दिल की गहराई
0: जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे पहाड़पुर से, और ये भी यूजर है हमारे जनाब।
3: अच्छा,
0: लवली से निखार आता है भाई, केसन लवली फेस वॉश जब लगाएंगे तो निखार आएगा, गो पिंपल लगाएंगे तो दाने भागेंगे, ग्लूटावाइट लगाएंगे तो भाई सांवला पन जाएगा, और चारकोल स्क्रब फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो भाई आपकी बहुत गहराई यानी कि मसामों के अंदर घुस कर जो है हमारा फेस वॉश जो है वो सफाई करेगा, इतना डीप क्लींजिंग है केसन का चारकोल स्क्रब फेस वॉश। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं खलील भाई?
0: जनाब मास्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं फतुल्ला साहब?
4: अरे الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟
0: میں بالکل جی خیریت سے ہوں اللہ کے کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل جی ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ موسم کیسا ہے ٹانگ میں؟
4: ٹانگ میں موسم بس آج سے پھر گرم ہو رہا ہے، کل تو گزارا تھا.
0: اچھا آج پھر گرم، آج ادھر بھی بہت گرم ہو رہا ہے.
4: آج گرم ہے، ابھی تو آپ نے کل کہا نہیں تھا کہ 14 دن تک تو موسم والوں نے ہم پر یہ وار کر دیا ہے.
0: بالکل اب اللہ تعالیٰ جو ہے کرم کریں اور یہ خبر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹی ثابت ہو جائے، ورنہ عید کیسے گزاریں. ہم نے تو ڈھیر سارا گوشت بھی کھانا ہے، اوپر سے ہاضمہ کنٹرول بھی شارٹ ہو گیا ہے، مسئلہ تو یہ ہو گیا.
4: میں نے گھر میں کہہ رہے، میں نے کہا خلیل صاحب نے کہا کہ 14 دن تک بارش نہیں ہوگی، موسمیات والوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے.
0: ہاں بالکل، محکمہ موسمیات والوں نے تو یہ لیٹر بھی جاری کر دیا ہے.
4: تقریباً ہمارے ٹانگ میں کچھ بار اکٹھ رہ گئے، بادل بھی تھے لیکن پھر جب صبح تھے تو بالکل بادل ختم ہو گئے،
0: بالکل ختم ہو گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہو اور عید کے کم از کم ایک سے پہلے یا عید والے دنوں میں کم از کم موسم اچھا ہو جائے. اور سنائیں کیسن آپ کے گھروں میں موجود ہے جناب؟ پیرا ڈالا ہوا ہے کیسن نے؟
4: جی جی بالکل.
0: اچھا جی ٹھیک ہے، چلو جی استعمال ہو رہی ہے مطلب کیسن؟ اچھا جی ماشاء اللہ. یہ ہمارے فیس واشز میں سے بھی گرمیوں کے اندر نہ کسی ایک فیمیل کو گھر میں کسی نوجوان کو ضرور استعمال کرائیں، ہمارے فیس واش بہت نکھار لاتے ہیں چہرے کے اوپر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب،
4: اللہ حافظ.
0: اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ جی. ہمارے ساتھ فتح اللہ صاحب موجود ہیں، ہمارے پہلے کالر ہیں.

0: लेकिन अब हर फिकर का हल है और हर स्किन को निखार सकता है केसन अगर आपने अपनी स्किन के मुताबिक हमारे फेस वॉशेज में से किसी एक फेस वॉश का इंतखाब कर लिया। चाचा फतेह खान हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम बकरिया खान, जिंदाबाद।
0: चाचा किवे हाल है? ठीक ठाक ही वे तुसा?
1: अल्लाह दी मेहरबानी ते को दुआवा करे ने आई।
0: ओ मेहरबानी
1: जी, जड़े दी 4 तो 5 तक वाला पक्का डेली प्रोग्राम तेरा सुन ने अल्लाह तेरी कंपनी को ठकिया ले, मजी ठकिया ले।
0: आमीन आमीन। पक्का ठका सुन दे वे 4 को 5 वाला प्रोग्राम है सी केड़ा एफएम?
1: पक्का डेली सुन ने
0: पहाड़पुर को या 91 को?
1: ना 91 को पहाड़पुर घर यार खत्म थी गई आंदा नहीं।
0: अच्छा आजकल पहाड़पुर ना लाइन खत्म है तुम्हारी है सी? हाँ बिल्कुल ऊ एफ एम ते है ना ऊ टाइम पहाड़पुर एफ एम डेरा एफ एम। अच्छा जी हाँ बस सारा जो प्रोग्राम शुरू थी तो उनको पहले साफ करे से साफ थी सी तो चल सी सारा प्रोग्राम।
1: मेरे ख्याल गर्मी है ना धूप होती है रुपारे कम थी वे ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही गाल है
1: ठीक है खुद सुना सुन देता है उसे ना। अल्लाह यकीन कर इंडिया दे देश आना 2064 दे सवाल लगे हैं हूं फर्दियां हूं में आना भी उस दौरान है उन्हें दी कमी पेशी थी भी कोनी
0: उन्हें दी कमी पेशी नहीं थी सारे अपने इलाके दे एफएम 20 किलोमीटर बाद नहीं सुनी दा सकूं
1: पादा लाहौर की छुट्टी हो गई है मुल्तान की छुट्टी हो गई है डेरा खड़े इस्माइल खान उनके हाथ खड़े ठीक है कहले कम बैठा है ना कहले दिल नहीं करता कहले बिजली कोनी
0: पाकिस्तान ले
1: कोई ना कुछ सेहत देवे अल्लाह जानो कोई चलते
0: ना। बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत
0: मेहरबानी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा मैं अल्लाह का शुक्र है।
1: राजा कपूर आजकल
0: हाँ राजा कपूर की घंटी आजकल नहीं लगती देखो सुन दे पैन तस्तन को आधे घंटी करो सारा देखो बात ठीक है सही।
1: राजा कपूर को सलाम ठीक है हाजी
0: अमीर को मेरे सलाम तुसा नहीं देते हाजी अमीर को मेरे सलाम नहीं देते तुसा पहले ये दसो मैं जनाब चाचा फतेह खान सानल मौजूद हैं जनाब ग्लोबल एफएम 91 को सुन रहे हैं। तो जनाब इस वक्त आप लोगों के मैसेजेस भी मौजूद हैं और उनको भी हम मौका देते हैं लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि भाई आपके इलाके में हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं। ये इतने सारे प्रोडक्ट जो केसर ने बनाए हैं 6 किस्म के साबुन है हमारे 4 किस्म के फेस वॉश हैं अर्जेंट फेशियल 5वां जो है हमारा मौजूद है ऑयल है शैम्पू है दर्द का तेल है शिफायत दर्द है वजन कम करने के लिए वेट कम पेट कम है मैदे को ठीक रखने के लिए हाजमे को ठीक रखने के लिए हाजमा कंट्रोल सिरप है ठीक है जनाब। होंठ अगर आपके काले हैं तो हमारा लिप ऑयल है। कुछ लोग गर्मियों में भी लोशन इस्तेमाल करते हैं तो केसन का व्हाइटनिंग लोशन भी है ठीक है जनाब 200 रुपए का आपको मिलेगा। लिप ऑयल हमारा 100 रुपए का है ठीक है जनाब। इसके अलावा 4 किस्म की हमारी क्रीमें हैं चेहरे पे लगाने वाली 2 क्रीमें हैं एक ग्लूटावाइट क्रीम है दूसरी नाइट क्रीम है जिसको हम कहते हैं जाफरानी फॉर्मूला केसन ब्यूटी क्रीम ठीक है जनाब जाफरान से बनी हुई है ठीक है जनाब। उसके साथ साथ जो है हमारी अगर आपके हाथ पांव फटे हुए हैं तो जनाब उनको ठीक करने के लिए क्रैक क्रीम है केसन क्रैक रिलीफ क्रीम और ये सबसे सस्ती है। इस वक्त मार्केट में जितनी भी क्रैक की क्रीमें हैं ना कोई भी 300 से नीचे नहीं है केसन की क्रैक रिलीफ क्रीम 250 रुपए की है ठीक है जनाब। उसके साथ साथ हाथ और पांव को गोरा करने वाली भी क्रीम है केसन व्हाइटनिंग क्रीम जो कि 350 रुपए की है। क्रीमों की कीमतें मैं आपको बताऊं तो जो नाइट क्रीम है नाइट वाली ब्यूटी क्रीम केसन ब्यूटी क्रीम 320 रुपए की है ग्लूटा 350 रुपए की है हाथ और पांव को हैंड एंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम 350 रुपए की है और जो क्रैक क्रीम है वो 250 रुपए की है ठीक है जनाब। अच्छा इसके अलावा ये कहा अगर आप टांक में मौजूद हैं टांक में हमारी ऑफर चल रही है 1000 रुपए की चीजें खरीदेंगे तो ये जाफरानी क्रीम जो है केसन ब्यूटी क्रीम जिसको कहते हैं नाइट क्रीम जिसको हम कहते हैं ये फ्री मिलेगी 320 रुपए की यानी कि 1000 रुपए के ऊपर आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है 320 रुपए की क्रीम फ्री मिलेगी। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा जी जनाब आपको जाना पड़ेगा सदाम प्लाजा जो पुरानी रमजान मार्केट है टांक में जो चौक है ठीक है जनाब उसी के साथ वहां पर जाएंगे तो क्या फ्री मिलेगा

केसन नाइट क्रीम, ये जनाब आप लोगों को फ्री मिल रही है। टांक में आप जाएंगे सदाम प्लाजा में मंसूर जन स्टोर के ऊपर, तो आपको ये क्रीम जो है 1,000 रुपए की खरीदारी के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। जनाब पहाड़पुर के अंदर हमने जो ऑफर चलाई हुई है जनाब, वो है हाजमा कंट्रोल।

0: 1000 की खरीदारी के ऊपर जनाब आपको पहाड़पुर में ये हाजमा कंट्रोल सिरप फ्री मिलेगा। केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, ठीक है जनाब। हसीब जनरल स्टोर रंगपुर अड्डा, ठीक है जनाब। बाजार के अंदर जो है नवीद जनरल स्टोर है, जीशान जनरल स्टोर है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, या फिर अवेश जनरल स्टोर है। 1000 की चीजें खरीदें, यानी कि 1000 के अंदर ऑयल खरीद सकते हैं आप, शैम्पू खरीद सकते हैं, और साथ में क्रीम खरीद सकते हैं या फक्की खरीद सकते हैं, और साथ में आपको हाजमा कंट्रोल सिरप फ्री मिलेगा। ये ईद के दिनों तक है, ईद के बाद ऑफर नहीं होगी। और डेरासविल खान में बड़ी अमेजिंग ऑफर लगी हुई है, आज भी बहुत सारे लोग आए हैं, कुरई से भी कुछ लोग आए हैं, डेरा शहर से भी, ठीक है जनाब। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है एक फैमिली आई हुई थी ये दो डीलें लेने के लिए। 1000 के ऊपर जो है, 1000 या इससे ऊपर की जो खरीदारी है उसके ऊपर तीन चीजें फ्री हैं, तो जनाब उनको हमने दी। फिर दानिया आई थी और दानिया के तो मजे लगे भाई, दानिया ने तो हमसे ऐसे ऑफर ले लिए, क्योंकि लास्ट टाइम 1000 के ऑफर के ऊपर वो कुछ नहीं लेके गई थी, तो आज हमने उनको नवाज दिया है जनाब इस ऑफर के साथ। तो जनाब उनको ज्वेलरी दी है और वो कह रही थी कि भाई ये ज्वेलरी एग्जैक्ट मेरे ईद के सूट के साथ मैचिंग कर रही है, ठीक है जनाब। तो अपने ईद के सूट के साथ वाली मैचिंग वाली ज्वेलरी जो है आप केसन शॉप से खरीद सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में यार। 1000 की चीजें खरीदें केसन शॉप से, साथ में आपको मेहंदी भी फ्री मिलेगी। कोन मेहंदी बहुत ही अमेजिंग, जो कि 100 रुपए वाली कोन होती है, 25-50-30 वाली नहीं, कोन मेहंदी फ्री मिलेगी। साथ में केसन की अपनी ज्वेलरी है जनाब, वो आपको फ्री मिलेगी, और साथ में आपको हाजमा कंट्रोल सिरप जो कि अभी तक हमारे पास नहीं पहुंच रहा, ठीक है जनाब। शार्ट है तो उसके अगेंस्ट हम आपको कुछ और चीज जो है वो दे सकते हैं, तो वो भी आपको मिलेगी, ठीक है जनाब। तो ये ऑफर चांद रात तक है, केसन शॉप पर तशरीफ लाइए और 1000 की चीजें खरीदने के ऊपर तीन चीजें अपनी पसंद की ज्वेलरी, ठीक है जनाब। साथ में जो है, चलो जी, उसकी जगह जो हाजमा कंट्रोल सिरप नहीं है तो उसकी जगह कोशिश करेंगे कि आपको लिप ग्लॉस या लिपस्टिक हम साथ में फ्री देंगे, ठीक है जनाब। और साथ में जो है कोन मेहंदी भी आपको फ्री मिलेगी। तो ये ऑफर सिर्फ केसन शॉप अकबर प्लाजा डेरा इस्माइल खान में मौजूद है। अकबर प्लाजा जो मियां कमर्शियल मार्केट के बिल्कुल पीछे है, तो वहां से आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और दुकानदारों के नाम मैंने आपको बता दिए कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ आप लोगों को मिल रहे हैं। तो जनाब ईद को सेलिब्रेट करें केसन के साथ, क्योंकि केसन हमेशा हमेशा आपकी खुशियों के संग रहने वाली कंपनी है और आपकी खुशियों को चार चांद लगाने वाली कंपनी केसन अशरफा के साथ।
1: सुबह की पहली किरण जैसे खिलता हुआ नूर, हर पल महके महसूस हो सुरूर,
2: चेहरे की रंगत अब और भी निखरे।
0: जी जनाब, दुर्योधन हमारे साथ, आप लोगों के मैसेजेस, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, कैसे हैं आप एंड आपके लिसनर्स। शो की तो क्या ही बात है, सबसे अलग और दिलों में घर करने वाला माशाल्लाह शो है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आप जैसे आरजे और अजीम रहनुमा का साथ नसीब फरमाया है। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर तादीर सलामत रखे, एंड आमीन सुम्मा आमीन। सोनी आप ही, आप कैसी हैं? मानूर, अनीसा, फातिमा एंड इरम शहजादी, आप सब ठीक हो ना? एंड उस्ताद जी, एक सवाल पूछा था कि हमारे जिस्म में पानी की कमी क्यों होती है, और ड्रिप की जरूरत पड़ती है, इसकी असल वजह क्या होती है? आप बताएं, आपकी बात 100% सच होती है। एंड नेक्स्ट मैसेज में कहती है कि आप समेत सबके लिए ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तमाम रंजिशों नाराजगियों और तलखियों को नजरअंदाज और माफ करते हुए अदालत आपको दफा 2026 के तहत कुछ दिन पहले ईद उल अजहा की मुबारक कहते हुए कामयाबियों और उम्र भर खुश रहने की दुआ देती है। स्पेशल लविंग सलाम टू यू ऑल लिसनर्स एंड मिसिंग पर्सन शाहगुल। अच्छा शाहगुल भाई, टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे साथ तो हर रोज होती है, मुझे समझ नहीं आती कि वो हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर रही। गुली अगर सुन रही है ग्लोबल एफएम 91 वालों, क्या गुली सुन रही है? गुली को जो भी बाजियाब करा के लाएगा ना शो के अंदर, उसके लिए भाई मुंह मांगा ही ना।
2: मोड भी खुश।
0: जो भी शाहगुल को, गुली को हमारे शो के अंदर पकड़ के लाएगा ना, वो मांगा इनाम उसे दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं कि कौन कितनी कोशिश करता है और शाहगुल को जो है फिर से नमूदार करते हैं केसन टी टाइम के अंदर, ठीक है जनाब। और ये गुल को मैसेज कर रही है प्रिंसेस अनमोल एंड रूख आपी भी। चलो जी, कोशिश करेंगे, ये जो 91 की फीमेल्स हैं, जैसे कि प्रिंसेस अनमोल हैं, ठीक है जनाब, शाहगुल हैं, गुली हैं, फरवा को नहीं याद किया तुमने, और उफेरा किधर है भाई? उफेरा का जिक्र भी नहीं हो रहा है जनाब। एंड रूखाबी को भी जो है ये कर रही हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी फीमेल्स हैं 91 एफएम की, लेकिन इन्होंने कुछ के नाम उठाए हैं, ज्यादती की है वैसे इन्होंने। बहुत सारे मैसेजेस हैं भाई, 120 की स्पीड मुझे मैं पढ़ने पड़ेंगे क्या? 120 की स्पीड और नॉन स्टॉप। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को सलाम। मोहम्मद अजहर जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो वेरी मच जी। हेलो सलाम जी सर जी, कॉल मी सर जी, कॉल मी ऑयल मी पकार दे, क्या मतलब होता है इसका यार, है नहीं? ऑयल लेना है या देना है?
1: किरण जैसे खिलता हुआ नूर,
0: बहुत मिले तुमको अदब, अदब वाले बहुत मिलेंगे तुमको अदब, अदब वाले, मगर तुम्हें याद आए कि बदतमीजियां हमारी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम केटीए, क्या हाल है? अनीसा हूँ, नाम तो सुना ही होगा, और जरा जारा परफ्यूम की खुशबू बहुत प्यारी है, और हमने दो डील ली है, एक मैंने और दूसरी मेरी भाभी ने ली है। मैं तो पहले से ही केसन की हेयर केयर जोड़ी इस्तेमाल करती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मेरी भाभी भी इस्तेमाल करेगी, लास्ट में महानूर को, अरूबा को और सब सुनने वाले को सलाम हो गया।
1: पहला प्यार
0: जी, जनाब पहला प्यार, अनीसा का पहला प्यार कौन है भाई? केसन। हाँ जी केसन,

0: अब केसन हेयर ऑयल और केसन, हम कहते हैं कि आपके जुल्फों का पहला प्यार भाई, इसलिए कि ये आपके बालों के अंदर जान डालने वाली जोड़ी है केसन हेयर केयर जोड़ी। तो मानूर की सिस्टर जो है सहेली सहेली है जनाब टांग से, और आजकल चूंकि हमारा एफएम टांग में भी सुना जा रहा है, तो पहले ये मानूर उनको बताती थी, है शोदे लोग तुम टांग में रहते हो, तुम तो केसन का प्रोग्राम सुन नहीं पाते हो, तुम तो केटीए की बातें नहीं सुन पाते हो। तो अब देखो वो भी किस्मत वाले हो गए हैं जी। तो मानूर आप उन्हें शोदे वत मत कहा करो टांग वालों को, ठीक है जी। आप माशाल्लाह वो हमारा प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम सुन रहे हैं, ना सिर्फ प्रोग्राम सुन रहे हैं बल्कि केसन की प्रोडक्ट जो है धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड सहेली के बाद उनकी दूसरी सहेली, अस्सलाम वालेकुम केटीए, कैसे हो? उर्दू वाली मानूर शो बहुत अच्छा है, और अनीसा को, अरूबा को, हिना गुल को, सोनिया आपी को और सबको सलाम कह रही हैं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आमिर अवान पाकिस्तानी हमारे साथ है, सलाम खलील भाई, आपसे सवाल है, लोग शादी क्यों करते हैं? और जुल्फकार, वो शादी इसलिए करते हैं कि उनको लड़की मिल जाती है और तुम्हें नहीं मिल रही, तो तुम लॉजिक ढूंढोगे कि शादी क्यों करते हैं जनाब। और भाई जिनको लड़की मिल जाती है, रिश्ता जिनको मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, और तुम्हें भी मिल जाए तो तुम ना करोगे, ना करोगे क्या? कभी भी नहीं करोगे जी। तो वजह यह है कि भी उनको रिश्ता मिल जाता है, शादी जिनकी नहीं होती वजह यही होती है कि उनकी मर्जी नहीं होती, उनको लड़की कोई नहीं दे रहा होता यार, उनके बाल शाल नहीं होते, हाँ जी गंजे होते हैं यार। अंकल शबरा और उस्ताद, शबरा उस्ताद को सलाम कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। सलाम भाई, कैसे हो डीए खान के, आज मौसम कैसा है पहाड़पुर का? तो अच्छी तेज हवा चल रही है। अच्छा आज सुबह छुट्टी थी क्या? शो की सब लिसनर को सलाम, रोनी पहाड़पुर से। टी टाइम में आपको रोनी वेलकम। और लड़के तुम सुबह सो रहे थे क्या कि तुमने प्रोग्राम नहीं सुना? मॉर्निंग शो हमारा सुबह भी चला है। भाई भाई भाई भाई,
1: सुबह की पहली किरण जैसे खिलता हुआ नूर, हर पल महके महसूस हो।
0: सलाम भाई, थैंक्स भाई, बंडल ऑफ थैंक्स, मैं 100% ही केसन पे यकीन है मुझे। और बस भाई आप वो वेट बढ़ाने वाली फक्की शॉप पे रखें इन दिनों में भाई, शायद या मेरी सिस्टर आपकी शॉप पर, कल ही आप भेजिएगा दानिया, कल ही आप केसन शॉप पर किसी को भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हम आपको मोटा करके दिखाएंगे।

जी जनाब बिल्कुल, ये हमारा ट्रायल पैक चल रहे हैं और जो लोग कमजोर लोग हैं उनको हम वो फक्की दे रहे हैं जो आपका वजन बढ़ाएगी, जो आपको मोटा थासा करेगी। ठीक है जनाब, तो कुछ लोगों को हमने दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और दानिया को भी हम जो है हेल्दी देखना चाहते हैं तो इनको देंगे। ठीक है जनाब, और कहते हैं भाई शायद ये मेरी सिस्टर आपकी शॉप पर आके ले जाएंगी। एंड भाई मुझे अपना वजन बढ़ाना है और मैं बातों बातों में हाजमा कंट्रोल सिरप लेना भूल गई आज भाई। अच्छा जी, हाजमा कंट्रोल सिरप केसन शॉप पर शॉर्ट है। ठीक है जनाब, और आज भी हमें स्टॉक रिसीव हो रहा था लेकिन आपको पता है इन दिनों में बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका, गाड़ियों का तो बड़ा मसला बना हुआ है। देखते हैं अल्लाह करे सोमवार तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर आपकी ईद जी हमारी ईद की तरह। अच्छा जी, अरे भाई सबको सलाम। एंड भाई हाजमा कंट्रोल सिरप का जो आपको बताया आज शॉप पे वो आप अपने लिसनर्स को बताएं, ये जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको भी पता चले कितना बेस्ट सिरप है। अच्छा, दानिया बता रही थी कि भाई मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं नाश्ता नहीं करती थी बिल्कुल। ठीक है जनाब, तो जब नाश्ता ना करे बंदे तो कहाँ जान बनेगी। तो कहते रात को सोते वक्त जो है मैं इसके दो चम्मच पी के जब सोती तो सुबह मुझे इतनी जबरदस्त किस्म की भूख लगी होती थी कि मैं जो है रज के नाश्ता करती हूँ। तो यकीन कीजिए ये जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है, बाजार में जो आपको सिरप मिलते हैं ना जो भूख लगाते हैं वो होते किसी और मर्ज के लिए हैं। ठीक है जनाब, लेकिन उनका साइड इफेक्ट ये होता है कि वो आपको भूख लगाते हैं, जैसे ट्रामेटाबोल है या मौसीगार है, ये वो सिरप हैं जो किसी और बीमारी के लिए हैं लेकिन एज ए साइड इफेक्ट उनका ये होता है कि वो भूख लगाते हैं, तो इसको एज ए एपेटाइजर यूज किया जाता है। जो केसन के पास हाजमा कंट्रोल सिरप है ये नेचुरल एपेटाइजर है, नेचुरल कुदरती तरीके से आपकी भूख को बढ़ाता है। ठीक है जनाब, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप जो है ये नेचुरली आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी भूख खुलती है और आप मजे से खाते हैं। तो भाई हम किसी की भूख कम कर रहे हैं, किसी की ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, पेट कम जब आप खाते हैं तो आपकी भूख कम हो जाती है क्योंकि वो मोटे बंदे खाते हैं। ठीक है जनाब, लेकिन जब हाजमा कंट्रोल सिरप पियेंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। मोहम्मद हमजा केमटा हमारे साथ मूसा वाली पिपला से है, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ सिर्फ अच्छे किरदार हमेशा याद रखे जाते हैं। खूबसूरत प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया शहजादे, आप भी बहुत ही खूबसूरत हैं। केसन के यूजर हैं शेर पाकिस्तान असमत पहलवान पाटपुर से खलील भाई, कल के मैसेज के जवाब भी नहीं दिया, जब मेरा मैसेज पढ़ रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, कल आपने कहा था मुझे गिफ्ट चाहिए, तो भाई है जी हम आप गिफ्ट आपके लिए तो जान भी हाजिर है। असमत पहलवान पाटपुर से शेर पाकिस्तान है जनाब, ये पहलवान है और केसन के इतने ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जनाब। तो आप, मैंने कल भी आज सुबह शो के अंदर भी जो मॉर्निंग शो था हमारा उसके अंदर भी मैंने बोला है कि भाई असमत आप हसीब जनरल स्टोर के ऊपर चले जाएं, वहां पर जाकर जो है बोले खलील भाई ने कहा है कि एक ग्लूटा वाइट क्रीम मुझे फ्री दी जाए, क्योंकि खलील भाई ने शो के अंदर अनाउंस किया है, तो वो मेरी बात को नहीं टोकेंगे ना रोकेंगे आपको, और चुप करके आपको जो है ग्लूटा वाइट क्रीम आप लगाएं और ईद से पहले पहले जी चांद जैसे व्हाइट बन जाएंगे।

0: स्टेशन, अब तीन स्टेशन और एक आवाज
1: के सामने
0: किशन की आवाज। सलाम भाई, मैं मीरब हूँ। मैं आपके राजा कपूर की कॉल आ रही है, लेकिन राजा कपूर साहब आप एंड के ऊपर कॉल करते हैं, जब एक मिनट रह रहा होता है मुझे बताएं। तो फिर से 91 वालों से कहते सर आप टाइम से पहले जो शो क्यों खत्म नहीं करते हैं, है जनाब। अच्छा जी, तो जनाब ये मैसेज मैं आखिरी पढ़ूंगा, उसके बाद बाय बाय। मीरब हूँ, मेरे आपके कुछ प्रोडक्ट यूज किए हैं जिनमें ऑयल और शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, गो पिंपल वाला, वो तो जबरदस्त है।
1: पेट में हल्कापन, जिस्म में नहीं।
0: अच्छा जो कहते हैं, लेकिन मेरे जो है कहते हैं कि मेरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, जिनको निकालूं तो फिर ज्यादा निकल आते हैं और वो जगह बहुत खराब हो जाती है। तो प्लीज मुझे बताएं मैं अब क्या लगाऊं। तो मेरी प्यारी बहन आप दो चीजें इस्तेमाल करें केसन की, एक केसन गो पिंपल फेस वॉश और साथ में ब्यूटी स्प्रे, दो चीजें इस्तेमाल करें। अगर आपका ये मसला एक हफ्ते के अंदर खत्म ना हो तो इन दोनों चीजों के पैसे आप हमसे वापस ले लीजिएगा। एक केसन गो पिंपल फेस वॉश और दूसरे साथ में केसन ब्यूटी स्प्रे, दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करें। ये टोटल केसन शॉप पर आएंगी तो ये आपके 500 के बनेंगे, दोनों को दोनों चीजें 500 रुपए की बनेंगे। इस्तेमाल कीजिए और ढेर सारा प्यारा हो जाइए, बनके उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाइए जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तीनों स्टेशन से इजाजत चाहूंगा, कल तक के लिए अल्लाह ने गवान।
2: सुबह की पहली किरण जैसे खिलता हुआ नूर।
3: इट्स 5 o'clock,
4: it's 5 o'clock,
3: hourly time check is brought to you by Radio Aman, Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
7: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
8: Zamzam hair oil.
7: د ویختانو کلاکړی یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي
8: چمک.
7: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
9: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

ये ऐलान सुना, लेकिन ऐलान के साथ जब इनाम की बारी सुनी, इनाम के बारे में सुना कि आधी सल्तनत उसको दूंगा और आधी सल्तनत के साथ साथ अपनी बेटी शहजादी की शादी भी उसके साथ करवाऊंगा, तो सब लोग आए किस्मत आजमाई की। हर शख्स अपनी दानिश और सोच के मुताबिक, ख्याल और तालीम और तजर्बे की बुनियाद पे, इलम की रोशनी में और हालात के तनाजुर को के तनाजुर में वो जवाब देते गए। लेकिन बादशाह सलामत को किसी भी अहले इलम और दाना, शायर और फलासफर और उस वक्त का जहीन और फतीन आदमी का जवाब पसंद नहीं आया, सबको रद्द कर दिया। अब सवाल क्या थे, मैंने पहले दोहराया कि दुनिया का सबसे बड़ा सच, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या होती है। तो ढेर सामेईन और ढेर नाजरीन, लोग आते गए, किस्मत आजमाते गए। किसी ने कहा कि दुनिया का जो सच है वालदैन मुस्तकिल नहीं हैं, दोस्त मुस्तकिल नहीं हैं। तो किसी ने कहा दुनिया का जो सच है, इज़्ज़त हमेशा नहीं रहती, ये मुस्तकिल नहीं है। किसी ने कहा इज़्ज़त मुस्तकिल नहीं है। किसी ने कहा रुतबा ओहदा मुस्तकिल नहीं है। किसी ने कहा रिश्तेदार मुस्तकिल नहीं है। तो सबके जवाब आते गए और जवाब के साथ साथ ये रद्द करता गया। अब दूसरी बारी, दुनिया का झूठ कि दौलत भी हमेशा रहेगी मेरे पास, इज़्ज़त भी हमेशा रहेगी मेरे पास, मैं हमेशा बादशाह रहूँगा, मैं हमेशा कभी बीमार भी नहीं होऊंगा, मुझे कभी नुकसान भी नहीं, ये दुनिया का झूठ है। ठीक है, ये दुनिया का झूठ है, कभी मुझे खसारा भी नहीं होगा, मैं कभी बीमार भी नहीं होऊंगा, तो ये दुनिया का झूठ। तो बादशाह दुनिया का सच और दुनिया का झूठ इसको क्या किया, रद्द करता गया। अब दुनिया की सबसे मीठी चीज़, किसी ने कहा वालदैन है, किसी ने कहा औलाद है, किसी ने कहा पैसा है। तो हर शख्स अपनी दानिश के मुताबिक, अपने इलम के दायरा कार में जो वो काम करता रहा है, कहता दौलत दुनिया का सच जो है वो दौलत है। अगर आपके पास दौलत होगी तो सब कुछ आपके पास होगा। अब दुनिया का झूठ जो है कि दौलत हमेशा है और दौलत हमेशा रहती नहीं है। तो सुबह अमीर देखते हैं, रात को गरीब होते हैं, सुबह अमीर होते हैं। तो दुनिया में कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, ये क्या है, ये सच है। और झूठ इस दुनिया का ये है कि दुनिया की हर एक चीज़ हमेशा मेरे पास रहेगी, मेरे से किसी और के पास नहीं जाएगी, मैं हमेशा बादशाह रहूँगा, ये भी झूठ है, नहीं रह सकते, मैं हमेशा सेहतमंद रहूँगा, ये भी झूठ है। तो दुनिया वाले जितने अहले इलम लोग थे, उन्होंने झूठ और सच के बारे में बताया, तो बादशाह इनको रद्द करता गया। तीसरा सवाल जवाब जो था कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़, मीठी चीज़ क्या है, कोई बीवी कहा किसी ने औलाद कहा, किसी ने बेटी कहा, किसी ने बेटे का, किसी ने रिश्तेदार का, किसी ने सच्चे दोस्त को कहा। ये सारी बातें जो लोगों ने की वो ठीक थी, लेकिन बादशाह की सोच में जो बातें थीं वो उनमें से एक भी जवाब नहीं दे सका। तो एक वज़ीर आया कि बादशाह सलामत आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दें, मैं जवाब दूँगा। तो बादशाह ने कहा बेशक दूंगा, आधी सल्तनत भी दूंगा और बेटी की शादी भी तेरे साथ करवाऊंगा, लेकिन अगर तीन सवालों का जवाब तू एक हफ्ते के बाद भी नहीं दे सका, तुम टाइम ले रहे हो, तो ये शर्त मशरूत हो गई बात, मैं ज़रूर दूंगा, अगर तू नहीं दे सका एक हफ्ते के टाइम के अंदर, फिर तेरा दौलत और बेटी तो वो तो ज़ाया हो गई, वो तो मैं नहीं दूंगा, तेरा सर भी कलम करूँगा। तो इस बहादुर नौजवान ने कहा बेशक आप मेरा सर कलम कर दें, लेकिन मैं तीन सवालों का जवाब ढूंढ कर ज़रूर लाऊंगा। तो जैसे वो निकला, उसने कहा टाइम स्टार्ट्स नाउ, अब टाइम शुरू होता है, आप जाएं और ढूंढ के लाएं, एक हफ्ते बाद इसी वक्त मुझे आप तीन सवालों के जवाब करेक्ट देंगे। अगर आपने नहीं दिए तो समझ लो कि आपका जो नुकसान होगा वो आपको फिर पता खुद चल जाएगा, क्योंकि मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं बादशाह हूँ। उसने कहा ठीक है जी, अगर आप किसी की परवाह नहीं करते तो ठीक है, मैं ढूंढ के। तो वो दर दर घर घर अपने शहर में अहले इलम लोगों को इकट्ठा करके दुनिया का सबसे बड़ा सच, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये हर शख्स उसी तरह जिस तरह बादशाह को जवाब देते रहे ना, इसी तरह ये लोग भी जवाब देते गए। तो आखिर अपने इलाके, अपने गाँव, अपने मुल्क से बाहर निकला, तो वज़ीर तो था, तो इसी सफ़र में जूते फट गए, पाँव पे छाले पड़ गए, शाही लिबास
क्या है, वो फट गया, पारा टुकड़े टुकड़े हो गया, लीर लीर हो

गया। वो सर पे जो शाहाना वजीरों वाली टोपी थी, वो पगड़ी थी, वो लटक के नीचे गले में आ गई। और मतलब वो बुरी हालत था, और बहुत ऐसा हाल जैसे कोई मलंग और फकीर हो। और जैसे वो अपने गांव से या इलाके से या दूसरे इलाके की तरफ सरहदों में गया, तो वहाँ पे एक किसान था। इस हालत को देखकर वो बड़ा अफसरदा हुआ कि इतना खूबसूरत नौजवान और इतनी तकलीफ में, आखिर वजह क्या हो सकती है। तो उसने कहा कि बात बाबा जी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ। इधर दो रिवायतें हैं कि ये जो फकीर है, चरवा है, ये असल में इस बादशाह का वजीर था। उसने वजारत छोड़ के यहाँ पे आ गया था, लेकिन एक रिवायत यह है कि ये आम चरवाहा था, लेकिन उस वक्त अहले इलम था। ये ज़रूरी नहीं कि चरवाहा हो तो भी अनपढ़ होगा, ये तो अल्लाह की अपनी तकसीम है। कोई जानवर चराता है और पढ़ा लिखा भी होता है, कोई अनपढ़ होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक होता है, ये तो रब की तकसीम है अल्लाह पाक जिसको। ये ज़रूरी नहीं कि इलम सिर्फ उनके पास होगा जो अमीर होंगे, और गरीब जो होंगे वो अनपढ़ रहेंगे, नहीं। जो जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उसी की तनासब से नस्बत से उसको इलम अता करते हैं। तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, इस वज़ीर जो वज़ीर था या चरवाहा समझो कि बेटा क्या बात है, बहुत बुरी हालत है आपका, क्या कोई परेशानी, उदासी है, अफसुर्दगी है, फिक्रमंदी है? कहाँ, तीन चीज़ें मुझे खा रही हैं। अगर आज कल तक मैं जवाब न दे सका अपने बादशाह को तो मेरा सर कलम होगा कि बेटा क्या बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सवालात हैं कि तुम्हें यहाँ तक ले आए, और ये बुरा हाल है, खस्ता हाल है, तकलीफ़ कम ज़्यादा हो गई है, भूखे हो, प्यासे हो, बहुत तकलीफ़ और अजियत से हो, कपड़े फटे हुए हैं, पाँव पे छाले हैं, थकान चेहरे से आयां है, और थका हुआ जिस्म है, सोए नहीं हो, आँखें बोझल हैं नींद से, आखिर ऐसे कौन से तीन सवाल थे कि तुम शाहाना ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पहुँच गए? तो उसने कहा बाबा जी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सच है उसकी तलाश में हूँ, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ इसकी तलाश में भी हूँ, और सबसे मीठी चीज़ दुनिया की। बादशाह ने ये तीन बातें बताई हैं सवालात, अगर इन सवालों का जवाब मैंने दे दिया तो मुझे आधी सल्तनत और बादशाह की बेटी इनाम में मिलेगी, नहीं तो शर्त ये थी कि अगर एक हफ्ते के बाद भी तू जवाब नहीं ला सका सही, जो मेरे मिजाज के मुताबिक होंगी और बिल्कुल 100% सही होंगे, तो तेरा सर कलम होगा। तो अब डर है, खौफ है, मौत का डर। तो उसने कहा ठीक है जी, अगर मौत का डर और खौफ है तो ऐसा करते हैं कि आपको जवाब देते हैं, लेकिन इनमें से मेरी एक शर्त होगी। दो सवालों के जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है वो मैं बाद में दूंगा जब आप मेरी एक शर्त पूरी करेंगे। तो इस वज़ीर ने कहा कि यार क्या बात है, एक शर्त नहीं, कई शर्तें मानने के लिए था, इधर सामने मौत थी और पीछे अगर शर्त नहीं मानता तो ज़िंदगी जाती है, सवालों के जवाब नहीं मिलते, और अगर शर्त मानता है तो आधी सल्तनत और ख़ूबसूरत शहज़ादी भी उसके हिस्से में आती है। तो कशमकश का यहाँ कौन देखता है, बस इसकी गर्ज़ भी पूरी कर लो, जो शर्तें जायज़ है नाजायज़ है वह पूरी करते हैं, आप मुझे बताएँ। तो इस पहले तो लोगों ने कहा था कि दुनिया का जो सच है वो दौलत है, दुनिया का जो सच है वो दौलत मुस्तकिल नहीं है, शोहरत मुस्तकिल नहीं है, इज़्ज़त मुस्तकिल नहीं है, नाम व नमूस मुस्तकिल नहीं है, रुतबा मुस्तकिल नहीं, ये रद्द हो गए थे। फिर दुनिया का जो झूठ था कि दौलत मुस्तकिल है, शोहरत हमेशा रहेगी, इज़्ज़त हमेशा रहेगी, नाम हमेशा रहेगा, ओहदा हमेशा रहेगा, सेहत हमेशा रहेगी, बादशाह में हमेशा, ये दुनिया का झूठ है किसी के पास। और किसी ने कहा कि दुनिया की जो मीठी चीज़ है वो दौलत है, वो अच्छी बीवी है, वो अच्छा घर है, ये सारी बातें दौलत है, मीठी चीज़। उसने कहा चलो ठीक है, मैं दुनिया वालों से हट के, ये सारे जवाब ठीक हैं, लेकिन जो बादशाह की नज़र में होगा इंशाल्लाह वही जवाब आपको। उसने कहा आप कौन हैं, कहा इससे आपकी कोई गर्ज़ नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। उसने कहा दुनिया का जो सच है वो बताएं, दुनिया का जो सच वो कौन सा है? उसने कहा दुनिया का सच जो है वो मौत है, ये ऐसी हकीकत है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा सच जो है वो मौत है, इसे मुसलमान भी मानता है, काफिर भी मानता है, ईसाई भी मानता है, खुदा को नहीं मानते, कब्र अशर को, मीज़ान क़यामत को नहीं मानते, लेकिन मौत को मानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। कहा चलो ठीक है। तो इसने जब ये बात सुनी तो वाकई इसको थोड़ी सी तसल्ली मिल गई कि ये बात तो बिल्कुल, आज तक इसका जवाब कोई दाना नहीं दे सका। अब बाबा जी दूसरे सवाल का जवाब दे दें
कि दुनिया का जो झूठ है वो कौन सा है, सच तो मौत है। का दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी आरजी है, लोग इसे मुस्तकिल समझते हैं। दुनिया हाँ ज़िंदगी न मालूम किस वक्त सांस का तार टूटे और दुनिया से चले जाओ। दुनिया का सबसे बड़े झूठ ज़िंदगी है, जिसका एक पल का भरोसा नहीं और लो 100 साल की आस और उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो है वो ज़िंदगी और ज़िंदगी के अंदर वो लम्हात, उन पर एतमाद और भरोसा करना है। हालांकि एक पल भी ज़िंदगी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टमाटर का गारंटी है टमाटर की, हफ्ता 4 दिन ठीक रहेगा, लेकिन ज़िंदगी के एक पल की गारंटी नहीं है। उसने कहा बिल्कुल बाबा जी, ये दोनों जवाब मेरी समझ में आ गए। अब तीसरा जवाब कि दुनिया की सबसे मीठी चीज़ का जिन लोगों ने जवाब दिए थे वो भी ठीक है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले आप मेरी एक शर्त पूरी करेंगे। उसने कहा क्या? कहा ये जो मेरे सामने कुत्ता बैठा है मेरा पालतू, इसने जिस बर्तन में दूध पिया है या पानी पिया है, ये जो पड़ा हुआ ये झूठा पानी आप पियेंगे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, जानवर फिर मैं वजीर और ये झूठा पानी कुत्ते का? कहा आप पियेंगे नहीं तो फिर आपका सर जाएगा, शहजादी नहीं मिलेगी, आधी सल्तनत नहीं मिलेगी, और तीसरी बात यह कि आपका सर भी जाएगा, जवाब भी नहीं मिलेगा। जब जवाब नहीं होगा तो दोनों शर्तें गई। तो उसने कहा फिर? कहा आप पानी पियेंगे। तो वज़ीर ने सोचा कि क्या किसी को पता कि वज़ीर ने जानवर कुत्ते के बर्तन में पानी पिया था या दूध पिया था? बस झूठा पानी है दूध है कोई मसला नहीं, मैं पी लूँगा। किसी को तो पता नहीं है कि वज़ीर ने अपनी सल्तनत के लिए या शहज़ादी की खातिर झूठा पानी कुत्ते का पिया था, तो चलो कोई बात नहीं। बस उसने आँखें बंद की और पी गया तो डियर सामीन और डियर नाजरीन, तो उस दाना शख्स ने या वो वज़ीर ने जो बादशाह का वज़ीर रह चुका था, या वो दाना था या चरवाहा था जो भी था, उसने कहा बेटा दुनिया की सबसे मीठी चीज़ गर्ज है। दुनिया की सबसे मीठी चीज़ गर्ज है। देखो आपकी गर्ज थी ना आपका, और गर्ज आपको लालची भी बनाती है, गर्ज आपको दुनिया के हर गुनाह पे आमादा कर देती है, चोरी पर हर एक चीज़ पर आमादा करती है, और मतलब बुरे से बुरा काम और जुल्म से भरा हुआ काम भी करवाती है। माओ का भी नाफरमान, वालदेओं का नाफरमान और बच्चों का सब कुछ का नाफरमान बन, जब आपकी गर्ज हो। गर्ज वक्त है ना, गर्ज के वक्त कुत्ते को भी बाप बना लो, इस तरह कोई मुहावरा है, तो जानवर को भी बाप बनाया जाता है। इस लिहाज से मतलब ये ऐब नहीं बनाया जाता कि ये मेरे रिश्तेदार है, कुत्ते को भी अपना बनाया जाता है। किस लिए? गर्ज की खातिर। तो वज़ीर समझ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ज़िंदगी है जो आरजी है और इसको मुस्तकिल समझते हैं, और दुनिया की सबसे मीठी चीज़ जो है वो गर्ज है, जिसके खातिर इंसान कुत्ते के बर्तन में भी पीना पी लेता है। तो ये गया वापस, फिर बादशाह का जो वक्त मुकर्रर था उसी वक्त पे पहुँचे या कुछ देर पहले। बड़ी मुश्किल से, बहुत बुरा हाल था, फटा जिस्म, थका जिस्म, जूते फटे हुए, छाले पड़े हुए, चेहरा कमज़ोर, थका हुआ और मायूसी उसके चेहरे, बहुत तकलीफ़ में, अजियत में था। तो गिरते पड़े बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कहा जवाब देना है, अगर नहीं दे सके तो आपको पता है आधे तो तुम वैसे भी मर चुके हो, ख़त्म हो चुके हो, सर कलम होगा आपका जब तीनों के सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। उसने कहा बादशाह सलामत, ये हालत जब हुई है तो मैं सवाल के ढूंढने में मैं ये पूरा हफ्ता मैंने गुजारा है, न रात को सो सका न दिन को सो सका, सफ़र और एक और दूसरे हर एक से पूछता शायद कोई जवाब दे दे। तो तीनों जवाब लाया तो सब लोग इकट्ठे कान खड़े हो गए कि दुनिया इतने सारे लोग जवाब नहीं दे सके, सब रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद, ये कैसे देगा? तो बादशाह ने कहा, वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने कहा दुनिया का सच जो है जो लोगों ने बताए थे वो आपने रद्द कर दिए, लेकिन आज मैं एक ऐसा सच लाया हूँ जो आप फौरन मान जाए। कहा दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? का मौत है, इसे हर कोई मानता है, ऐसा सच है इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। बादशाह ने कहा ठीक, एक जवाब दुरुस्त हो गया। अब दूसरा बताएं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ का ज़िंदगी है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, हालांकि एक लम्हा भी भरोसे के काबिल नहीं है ज़िंदगी का। दोनों जवाब ठीक, अब तीसरी बताओ, तीसरा सवाल का जवाब कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे मीठी चीज़। तो उसने बताया
وزیر نے کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے, اور جس کی خاطر انسان جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتا, اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا, ہاں جی دن اور رات کو, خزاں بہار کو نہیں دیکھتا, گرمی سردی کو نہیں, بس اپنی غرض پوری کرنے کے چکر میں, چاہے وہ کسی کو مارنے سے ہو, کسی کی چوری سے ہو, کسی کی انسلٹ سے ہو, کسی کی ہتک سے ہو, کسی کی رسوائی کرنے سے ہو, یا خود کوئی ایسا شرمناک کام کرنے سے ہو, بس غرض ہے تو غرض کی خاطر انسان سب کچھ کر جاتا ہے. تو بادشاہ نے کہا بالکل آپ کے تینوں جواب درست ہیں, آدھی سلطنت بھی دیتا ہوں اور شہزادی کی شادی بھی تیرے ساتھ کرا دوں گا, کہ تم اپنی جو آپ نے شرط لگائی تھی اور جو سوالوں کے جواب میں نے رکھے تھے اور انعام, بالکل میں اپنے وعدے پر پابند ہوں, آدھی سلطنت بھی دے دی, شہزادی کی شادی بھی اس شہزادی کی شادی بھی اس وزیر کے ساتھ کر دی, اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مستقل نہیں ہیں, یہ سچ ہے. دولت سمجھتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, ناانصافیاں کرتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دولت, اختیار, طاقت میرے پاس رہے گا, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, یہ کبھی کسی کے پاس نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مستقل ہے, تو دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں. یہ وہی کہتے ہیں نا کہ اگر آج پیسے میرے پاس ہیں تو کل تیرے پاس ہے. کتنے امیر لوگ دیکھے ہم نے, کتنے کروڑ پتی, ارب پتی, بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک, لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ انجام پھر یہ ہوا کہ ان کے پاس صبح بادشاہ تھے, رات کو گدا تھے, صبح تخت پر تھے اور شام کو پھر جیل میں ہوتے تھے. اب صبح بادشاہ ہوتے تھے, فاتح ہوتے تھے, اور شام کو مفتو ہوتے تھے. تو یہ زندگی صبح عزت والے اور رات کو پھر وہ رسوا ہو گئے. تو اس قسم کے بہت ساری باتیں ہماری زندگی میں روزانہ یہ کہانیاں بنتی ہیں, جنم لیتی ہیں اور دم توڑ دیتی ہیں. تو کوشش یہ کریں ڈیئر سامعین, دنیا کی عارضی چیزیں ہمیشہ نہ ہیں نہ تھیں ہیں. آپ میرے ابو دادے کے پردادے کے پاس جو تھا وہ رہ گیا نا, پھر دادے کے پاس پہنچا, اس کے پاس سے میرے ابو تک پہنچا, ابو سے پھر مجھ تک پہنچا, اور مجھ سے میری اولاد تک, اور میری اولاد سے پھر ان کی اولاد تک, اور سب کچھ رہ جانا ہے. ظلم نہ کریں, ناانصافی نہ کریں, زیادتی نہ کریں, کسی کی رسوائی نہ کریں, کسی کی بیزتی نہ کریں, کسی کو غلط, ناکارا, بیکار نہ سمجھیں, ہر ایک کو عزت دیں, احترام دیں, اور غرض کے پیچھے نہ پڑیں. غرض ایسی خطرناک چیز ہے, غرض جسے آپ سے گھٹیا کام بھی کروانے پر آپ کو کرانے پر آپ کو تیار کر دیتی ہے. تو اغراض والی دوستیاں نہ کریں. جن کی اغراض آپ کے ساتھ ہوں گے نا, جن کے وہ ایسا ہوتے ہیں کہ پھر اغراض پورے ہونے پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا بھی کی پہچان رکھا کریں جو اپنی غرض کے تحت آپ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں, اور غرض پوری ہو جانے کے بعد آپ کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے, آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے, اور آپ کی امیدوں کو توڑ کے, اور آپ کو مایوسیوں میں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں, خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ان تین باتوں سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ دنیا کی کوئی چیز عارضی نہیں, دنیا کی کوئی چیز مستقل نہیں, دنیا کی میٹھی چیز جو ہے وہ اولاد, دولت, شہرت نہیں, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ موت ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ زندگی ہے, اور دنیا کی سب سے میٹھی چیز غرض ہے. ماں پو دنیا کے سا عجیبہ گوندے دنیا ولیدہ, سہر خندے گی ماں خام میں پجڑا ولیدہ. ہر سڑے دطلب پسیتل منڈے وہی, ہر سڑے دطلب پسیتل منڈے وہی, دنیا ہی چاخ پلا نکڑا کا ہر چا ولیدہ. مین لاڑا لیبا سشوا د پیسو دور کے, نمیں مجنون ولیدو نمیں بیا لیلا ولیدہ. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے.

रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।

0: قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदोसियोटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
3: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
4: योर म्यूजिक, योर रिक्वेस्ट।
5: दिस इज रेडियो स्टेशन, रेडियो अमन।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
1: योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट।
2: दिस इज रेडियो स्टेशन
3: रेडियो अमन।
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत

0: नंबर 0342-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
1: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल, जमजम हेयर ऑयल द विख्तानो कुलाकड़ी यो पदवा और विख्तानो लावर कवि यो कुदरती चमक चमक। आया स्तासो पे विख्तानो की खुशकिदा विख्तान मो गुरजेगी, विख्तान मो वदन कवि या मो विख्तान मातीगी। जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल हम स्तासु दफारदी कुमचे स्तासु दे विख्तो खुशकी खारख प मुकमल तो गखत्म भी। नो बिल्कुल जी, हम उस जानला इंतखाबो की जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल चिहाइस्त मो यो फुद्वशी। नो द मिलाविदो पता याद साथ फ्रंटियर फर्नीचर चारफाई नाइलोन मार्ट मदे मुकाबिल गली गुलाबी पम टांग सिटी। राबता नंबर 0343-912-1745।
2: Your station.
1: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल ले।
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान यो और डेर गर्जिदली कड़ीदली डेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
1: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
3: औ द नूरु मालूमातो दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
1: 0319-55-23-404।
4: Your music, your request.
5: This is Radio Station.
6: Radio Aman.
7: Kaadi vani budi gaya gunasta sana kambi.
8: Assalamualaikum, zayo Khadija tanha ehsaaz mate asahaba road pishawan na sama ba meda har wa kharapa wa har wa bai chalan ka wo bad hazmi wa numadi doctoran na ilaaj ukro huma tai kis ma farak na shumela gala ikram mamu ishma karne ke ishma equaset sherbat lunch pro numa hum zan da para ishma equaset rolo mashallah da yosu urzo istemal sara sama meda bilkul tikshwa na chalan sta na bad hazmi जमा आवाज सो कहूँ पकम कम रेडियो और इजतोल लिसना तदा पैगाम बार कम कस्ता सो तायस्ता सो कोर की चाहता हम दा मेरी से किस्मा मसलवी नुयोजल जरूर इश्मा इकोसेट शरबत इस्तेमाल कई।

0: बच्चे भाई बेबी सो गई है। आई एम साबिया, यू आर राइट साबिया, बिल्कुल खा
1: रहमान फ्रॉम गुरगुल फलकोरना प्रोग्राम दी नई सी चीज़ टोलो मीनवाल था।